नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की द्वादशी तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, विविध भारती के कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट,

0: करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही

परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। ये था आज का चिंतन और अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते चलें। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ सुनिएगा। आज सुनिए भाग 238। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूबदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। 7:00 गूंजेगी सदा भूले बिसरे गीत की। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। 8:00 समाचार सुनिएगा और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी सुनिएगा। लेखक है मिलिंद सबनीस और प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 9:00 पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और आज रात 9:30 पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए

लो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम होगा और 12:05 पर यादों की महफिल सुनी सजेगी। इसके पहले 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। दिन में 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष 35वीं कड़ी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2 समाचार का वक्त है 2:15 से और 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। तीन बजे हेलो सहेली कार्यक्रम होगा और 4 पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी सुनिए सुनहरी पूछ वाला अमर पंछी, लेखक है मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का है, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। 6 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा और 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका श्रृंखला की 3री कड़ी सुनिएगा। 7 जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर अनमोल यादें गुलदस्ता सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 8 हवा महल में सुनिए प्रहसन पड़ोसी का कैमरा, लेखक हैं हिमांशु श्रीवास्तव और निर्देशक हैं भगवान साहू। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 10 सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था झरोका आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का।

सिंहासन पर श्री राम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं, जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है, किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम, दम, संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से

भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण, व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य, यज्ञ, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ। हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर सुनिए कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हम संगीत सरिता की इस तीसरी कड़ी में फिर उपस्थित हैं और पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार जी, नमस्कार। रोनू दा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की बांसुरी की और अपने गुरु जी के बारे में बताइए, तालीम के बारे में।
2: हाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावे। गुरु

0: इति ज्ञान। तो ये एक बड़ी अजीब सी शुरुआत है। मैं बचपन में वैसे तो बहुत शांत था, माताजी बोलती थी कि सबसे शांत भाइयों में यही था, मगर एक गलती मुझसे ऐसी हो गई,
1: जी
0: वहीं से मैं बांसुरी बजाने लगा। वाराणसी में मेरा जन्म हुआ
1: जी जी
0: 1963 में। तो जब मैं 6 साल का था तो हम लोग सारनाथ करके एक जगह है, वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ है
1: जी
0: और बड़ी आध्यात्मिक जगह है। वहां पे पिताजी पन्नालाल घोष जी के शागिर्द थे
1: जी
0: और पन्ना बाबू की उन्होंने सेवा भी बहुत की, और पिताजी बहुत बड़े पेंटर थे मगर शौकिया बांसुरी बजाते थे और होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत बड़े थे
1: अच्छा
0: जी। तो वो जो बांसुरियां हम लोग अभी बहुत संभाल के रखते थे, उस जमाने में कोई बस खाट पे पड़े हुए थे, तो मैंने 5-6 बांसुरियां, कोई खिलौना तो था नहीं मेरे पास, तो बांसुरियों से खेलते खेलते मैंने 5-6 बांसुरियां तोड़ डाली बस। तो शाम को आके लाल पीले हो गए एकदम वो। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं, इतनी मार मुझे पड़ेगी आज की। मैं तैयार हो गया सजा पाने के लिए,
1: जी
0: मगर कोई सजा उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी बांसुरियां तुमने तोड़ी है उतने ही घंटे रोज रियाज करना पड़ेगा,
1: अरे
0: यही तुम्हारी सजा है।
1: गजब।
0: और मैं था बड़ा ईमानदार बचपन से, मैं झूठ कभी नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता हूं
1: जी
0: अगर मजबूरी ना हो तो। तो कहते हैं ना, सच बोलो भाई सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, एक झूठ के लिए यहां 100 झूठ बोलना पड़ता है।
1: सही बात है।
0: सच बोलो भाई सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत
1: कुछ मत
0: बोलो।
1: बोलो।
0: तो ये लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं कविता भी लिखता हूं। तो वो जो मैं पिताजी से सीखने लगा और 6-6 घंटे रियाज करने लगा, तो मैं बांसुरी वादक ही बन गया। उसके बाद 1973 में हम लोग बंबई आ गए। बंबई आने का कारण कुछ बनारस छोड़ना था ऐसा नहीं, होम्योपैथिक का इतना डिमांड बनारस में था नहीं। तो यहाँ डॉक्टर मुखर्जी थे, वो
1: जी
0: पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने बंबई बुलवा लिया। बंबई आने के बाद हम लोग ऐसे आदमी से मिले जो कोई सोच नहीं सकता कि मैं उनको मिला हूं। मेरे उम्र के शायद ही कोई होंगे जो उनसे मिले होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु को भी कई मतलब कब 30-35 साल हो गए।
1: जी जी
0: उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, तान
1: जी
0: सम्राट। अब वो तान सम्राट कोई पद्मश्री पद्म भूषण नहीं है, तान सम्राट ऐसा कोई टाइटल नहीं है कि इनको भी दे दिया उनको भी दे दिया इनको भी दे दिया। सारे उस्ताद चौबारे में बैठते थे और उनकी महफिल लगती थी, उसमें एक एक करके सब गाते थे और उसके बाद एक दूसरे को एक एक नाम देते थे। अरे ये तो धीरे-धीरे का बादशाह है, अरे इसके तो खटके का जवाब नहीं, अरे इसके तो साल लगाने का अंदाज अलग है। तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब तान जब गाए तो सारे अमीर खान साहब और ये लोग सब मिलके बोले, अरे ये तो तान का सम्राट है ये।
1: गजब।
0: तो तान सम्राट से मैं मिला, आप सोचिए 74 में, 11 साल की मेरी उम्र, और उनकी बंदिश आज तक मुझे याद है,
1: जी
0: जिसको राशिद भाई भी गाते थे,
1: जी जी
0: मगर जो आज भी YouTube में है, कोई सुने तो बोले कि ऐसा नहीं गाया कोई।
1: जी कौन
0: मियां की
1: सी
0: तोड़ी पार करो तुम अब मोरी नैया,
1: जी
0: हजरत निजामुद्दीन औलिया।
1: तो यहां पर सुनाएंगे क्या थोड़ी
0: मैं
1: सी?
0: जरूर सुनाऊंगा।
1: जी।

0: क्योंकि मियाँ की थोड़ी है ना,
1: जी
0: तो जाते वक्त पंचम नहीं लगेगा। गामा धा नहीं जाने धा बामा धा बामा गा रे सा, ऐसा इसका चलन है। एक बदलाव मैंने इसमें किया है, खास साहब गाते थे खाली से शुरू करते थे, मैं पार उसको मैं सम से लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उसमें सम दिखता है। तो मेरी जो रिकॉर्डिंग मियाँ की थोड़ी की सीडी है उसमें मैंने सम से लिया है पार।

0: उसको गाना भी इतना मुश्किल है
1: जी।
0: तो गंज शखर के लाड लडैया में उन्होंने जो एक तान ली, तब से मुझे तीन प्रकार के तान वो गाते थे, वो जो मुझे याद है, एक तलवार कट तान, एक जिलेबी तान जिसमें बहुत हसीन थे देखने में
1: जी।
0: उनकी तस्वीर भी पिताजी ने बनाई, क्योंकि पिताजी ने कहा कि इतना सुंदर गायक मैंने तो नहीं देखा
1: जी जी।
0: और मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते थे
1: जी।
0: लता जी ने उनका गाना सुनना चाहती थी, तो लता जी ने उस जमाने में 500 रुपए एडवांस दिए थे।
1: गजब।
0: वो एडवांस लेके खान साहब चले गए दिल्ली।
1: अच्छा।
0: प्रोग्राम गाया ही नहीं।
1: अच्छा।
0: और पिताजी से कहा कि वहां पे किसी का डेथ हो गया है।
1: हाँ।
0: आप, मैं जा रहा हूं, मैं गाऊंगा नहीं।
1: हाँ।
0: आप अपने बच्चों को लेके लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले के वहां चले जाइए, उनके जैसा गुणी कोई नहीं है आज
1: जी,
0: मैं भी नहीं, मैं तो गा लेता हूं।
1: हाँ।
0: वो जानते भी है। लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी के वहां हम लोग बाबा भगवान दास जी के आश्रम में माटुंगा में उन बाबा के वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात पात का
1: कोई भेद नहीं,
0: कोई भेद ही नहीं,
1: बिल्कुल।
0: बस संगीत ही संगीत उनको अच्छा लगता था। लक्ष्मण प्रसाद जी हमारे हिंदुओं में जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, पहले बाल आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम जिसको, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये चार आश्रम बताए गए, मतलब चार जीवन के चार पहलू। तो वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया था, घर में नहीं रहते थे, वही बाबा के वहां रहते थे।
1: अच्छा।
0: वहां जाके उनके दर्शन किए, मेरी दीदी उनसे गाना सीखने लगी, मैं भी गाना सीखने लगा। मगर जब भी कोई बंदिश हो मुझे बताएं, मैं उस बंदिश को गाता भी था और बांसुरी में और अच्छा मैं उसको निकालता था।
1: गजब।
0: एक दिन वो पिताजी से बोले कि भानु दादा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी हैंडराइटिंग देख के लगता है कि इसको फ्रेम में करके दीवार में रख के। तो पिताजी को बोले कि आपका बेटा गाता तो ठीक ठाक है, मगर ये बांसुरी वादक बनेगा। तो पिताजी बोले किसके पास ले जाना चाहिए। तो उस जमाने में हरि जी का इतना नाम नहीं हुआ था। 1976 में मैं 13 साल का हो गया। बोले यहीं पे सायन में फिल्म डिवीजन में काम करते हैं पंडित विजय राघव राव, उनसे गुणी बांसुरी वादक कोई नहीं है। गुरु बहुत फेमस होने की जरूरत नहीं है, गुरु ज्ञानी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: वहां पे मैं चला गया और बांसुरी की शिक्षा मेरी होने लगी। वो भी पन्नालाल घोष जी को देख के ही बांसुरी शुरू किए थे।
1: जी जी।
0: तो तीव्र मध्यम के लिए छोटी उंगली की इस्तेमाल वो भी आवश्यकता वो करते थे। जो हरि जी का टेक्निक है वो तो भोलानाथ जी वाला टेक्निक है, तो उसमें छोटी उंगली की इस्तेमाल नहीं है, वो शहनाई वाली टेक्निक है।
1: जी जी।
0: और ये जो मैं बजाता हूँ ये पन्नालाल घोष वाली टेक्निक है।
1: जी।
0: मेरे गुरु जी ने एक दिन रात नहीं जा रहे थे तो घर से निकाल दिया मुझे।
1: अच्छा।
0: बोले अभी ये बजेगा तो ही आना। और मैंने 40 दिन का चिल्ला किया, बस 40 दिन एक ही आसन में बैठ के 4 घंटे रोज, जिसको 40 का चिल्ला कहते हैं, वो चिल्ला मारा मैंने, उंगलियां फूल जाती थी तीव्र मध्यम सानी दा बाबा दानी मैं बजा के सुना रहा हूं। देखिए
1: जी जी,
0: आपको लगेगा कि ये जो कई लोग प्यार से इसको कानी उंगली भी कहते हैं, उसका स्पीड आप तर्जनी जो है हमारा और मध्यमा जो है उतना स्पीड आपको उसमें दिखाई पड़ेगा।
1: जी जी।
0: देखिए
1: जी, सुनाए सर।
0: सानी दा पामा मामे कानी उंगली से बजा रहा हूं तो उसका स्पीड देखिए।

0: जो यमन राग, राग श्री, ऐसे राग अगर आप छोटी उंगली, कानी उंगली का इस्तेमाल लिटिल फिंगर का नहीं कर रहे तो कैसे बजेगा? मैं तो लिमिटेशन मानता हूँ इसको।
1: जी जी जी,
0: जो इसका इस्तेमाल नहीं करते उनके वादन में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है।
1: तो ये जो आपने बजा के दिखाया, अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो बारीकियां पंडित जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं आंखों से, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो सचमुच ये बाकायदा कहीं अंकित करने लायक है।
0: मैं गुरु के बारे में एक बात और कहूं
1: जी,
0: मेरे गुरु जी इतने महान थे मगर वो पहले थे कर्नाटिक म्यूजिशियन
1: जी,
0: कर्नाटिक फ्लूट बजाते थे और डांसर थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो उन्होंने जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सीखा वो पंडित रविशंकर जी से सीखा।
1: अच्छा।
0: हालांकि रविशंकर जी के उनकी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फर्क था। 2011 में मेरे गुरुजी गुजर गए, 2012 में रविशंकर जी गुजर गए। रविशंकर जी बड़े गुरुजी मैं बोलता हूं, वो जब मेरे गुरुजी से पूछे कि मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूं एशियाड के लिए, इंदिरा गांधी जी के कहने में, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, इसमें मेरी बांसुरी बजी हुई है
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो

0: मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरा एक शागिर्द है, वो मुझे रानेंद्रपुरा नाम से बोलते थे और रानू बोलते थे,
1: जी।
0: उसका दिमाग बड़ा तेज है, उसको ले लीजिए आप इसमें। तो मैं उस गाने में जब बजाया तो मैं ना नोटेशन बहुत फास्ट लिखता था बचपन से, एकदम स्टेनो की तरह, स्टेनोग्राफर जैसे होते हैं।
1: जी।
0: तो वो बोले कि विजय, मेरे गुरुजी का नाम लेकर बोले, सो सॉरी मैं ऐसे नाम ले रहा हूं, ये लड़का मुझे दे दो,
1: अरे गजब।
0: ये लड़का आप मुझे दे दो।
1: हाँ।
0: तो गुरुजी बोले आपका ही है, बोले इसको दिल्ली भेजो। उदय शंकर जी जो रविशंकर जी के बड़े भाई थे,
1: जी जी
0: उनके
1: जी
0: ऊपर मैं एक फेस्टिवल कर रहा, उदय उत्सव, उदय उत्सव में मैं बजाने चला गया। तब से पंडित रविशंकर जी के जितने एल्बम हुए सब मैंने बजाया, फिर उनसे डायरेक्ट भी मैंने कुछ राग सीखे, जैसे परमेश्वरी, तिलक श्याम और राग रसिया।
1: जी
0: मतलब यहां तक कि नट भैरव में क्या सोचना चाहिए, नट भैरव कई लोगों को मालूम भी नहीं कि ये रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है, ये साउथ का एक राग है सरसांगी,
1: जी जी जी
0: नट भैरव ही है वो,
1: जी
0: उसको रूप दे दिया रवि गुरु जी ने कि ये सादा ने सरे रे गा रे, यहां नट है ना,
1: जी जी जी
0: सारे रे गा गा मा पा रे गा मा पा गा मा रे नी दा, सा को छोड़ के नी सर ने, मैं बजा के दिखा रहा
1: जी
0: हूं,
1: जी
0: देखिए कैसी बात है। ये नट भैरव है।
1: वाह पंडित जी, अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो आज की इस कड़ी को यहीं समेट रहे हैं। अनुमति लेते हैं श्रोताओं से, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में सुनिए फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मूल्य बिस्तर गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने अभी सुना। आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपने खास अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार जी की तमाम फिल्में हैं जिन्हें हम बड़े ही चाव से देखते हैं। आइए अब सुनते हैं ये गाना फिल्म नौशेरवाने आदिल से।

0: जाते।
1: 1957 में रिलीज हुई फिल्म नौशेरवाने आदिल, जिसमें सोहराब मोदी के साथ अभिनेता राजकुमार और माला सिन्हा नजर आए, बहुत मशहूर फिल्म। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पंचायत का ये गाना।

0: फिल्म पंचायत का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शकील नोमानी का कलाम था और इकबाल कुरैशी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

पूरा हुआ अंतराल भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और साथियों के स्वरों में पैगाम फिल्म का ये गाना, प्रदीप के बोल हैं सी रामचंद्र का संगीत।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं 1961 में रिलीज हुई फिल्म घराना का ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत।
1: वाले

आइए अब सुनते हैं फिल्म अर्धांगिनी का गाना। 1959 में रिलीज हुई इस फिल्म में अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ राजकुमार कैप्टन यानी पायलट की भूमिका में नजर आए थे। और इस गीत को जो आप सुनवा रहे हैं, ये लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत वसंत देसाई का है।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे उजाला फिल्म का ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जय किशन की धुन। इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

आपने सुना लाल पत्थर फिल्म का ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे के स्वरों में, नीरज के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। आज सुप्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपनी विशिष्ट शैली में बोले गए संवादों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले राजकुमार साहब को याद कर रहे हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीतों के साथ आज के इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं फिल्म हीर रांझा का ये गाना।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना,
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

फिल्म हीर राझा के ये सभी संवाद काव्यात्मक शैली में लिखे गए थे। 1970 में आई थी ये फिल्म और उन्हें अपने खास अंदाज में बोला राझा बने सजीले बाने में सजे राजकुमार ने। इस फिल्म में उनके साथ थी प्रिया राजवंश। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिलेक मंदिर का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: फिल्म बाकीज़ा का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कैफ भोपाली का कलाम था और गुलाम मोहम्मद का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाँ, मेरा ही प्यार के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म वक्त का ये गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रवि ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में आप सुन रहे थे फिल्म हमराही का ये गाना। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत के साथ ही अब आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी

विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च

0: आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने होने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है

0: है एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी

0: एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: पांच में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानूनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907, अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को शोभा

ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।

0: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
1: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ।
2: भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं अलीशा मेंडोसा और मोहित चौहान की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

द डर्टी पिक्चर, इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कमाल खान का गाया हुआ, रजत अरोड़ा के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं माय फ्रेंड पिंटो फिल्म का ये गाना केके की आवाज में। लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अजय अतुल का है।

सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरजू की आवाजों में आपने सुना गुलजार का लिखा यह गीत, विशाल भारद्वाज का संगीत, फिल्म का नाम एक थी डायन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: चले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेह पूर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: सर,
0: सुनते?
1: जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से एक गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरा खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्ना लाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्ना लाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्ना लाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है सर, बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका बहुत पुराना सोचा हूँ मैं तो, 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधर सर फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलुम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगह पर है।
0: जी
1: हम गुलुम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब,
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना। तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और KL सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर।
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री।
0: जरूर
1: इसके
0: जरूर।
1: रोल है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर,
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ, तो सब नयन रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर।
0: और
1: श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी, और बताइए विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर।
0: गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर।
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने
1: जी
0: सेलेक्ट
1: फिल्म का
0: किया?
1: नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए
0: ओहो
1: मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं। और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों
1: सेब
0: के
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बाग
1: तो
0: के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर

0: से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं,
1: जल्दी आ जाते हैं।
0: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
1: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
0: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आई ना बता कैसे, ये गाना सुनना है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर। जी
0: नमस्ते।
1: सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से। सर,
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से।

0: हेलो, फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत से।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आपका नाम बताइए।
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना, अमरदीप जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। भैया
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग
1: जी
0: फोन करते हैं, तो आपके
1: जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहां पे
0: जी
1: मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक
0: जी
1: का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले
1: जी
0: साल
1: जी
0: भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना कुछ
1: जी
0: नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहां पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो

0: हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
1: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
0: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला,
1: बहुत बढ़िया है।
0: कोई भी ऐसा भरती फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
1: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
0: फिल्म का नाम है पत्थर के शरम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, और गाना है पत्थर के शरम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
1: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के शरम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट
1: जी
0: हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो ना फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
0: अच्छा तो ये बारात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है। तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ।
0: आपकी नजर से
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: ओ
1: दिन
0: अच्छा।
1: 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
1: हाँ जी
0: वाले
1: हाँ जी,
0: कहाँ जाते हैं घूमने? आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं। सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
0: नहीं
1: गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
0: जी।
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से
0: चलो
1: काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट
1: हाँ जी
0: सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना? तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी सर,
0: फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं,
0: जी।
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ। लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं वो कश्मीर के नज़ारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं
0: आ गए हैं
1: कहाँ।
0: कहाँ, क्या बहुत
1: जी
0: ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो फरमाए।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया हैं, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जी कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा
0: जी,
1: और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240002462। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल से।

लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये गीत। संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। एल्बम का नाम था वर्षा ऋतु।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे थे ये गजल चंदन दास की आवाज में। पंकज उधास की आवाज़।

0: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: पंजाबी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की

0: यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
1: जी,
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800-440-5559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत?
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है ना?
6: मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट

0: दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
0: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
0: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
0: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुद या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख

0: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
1: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे
0: जी
1: जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
0: जी
1: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं।
0: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया।
1: जी
0: इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती। हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। जहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह,
0: हाँ तो आसिफ खान अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को

0: दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का इस सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए। कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी थी। रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन।
5: साधु बाबा।
4: अब अच्छा,
5: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
4: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
5: क्या?
4: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
5: है?
4: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक,

0: बड़ा भारी इंतजाम है। अच्छा हाँ, बहुत बड़ी फौज है, और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
1: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
1: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
1: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुषवेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ, मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

la la la la la la la la la la la la la la. होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिर आए बदरा। सवरिया जोड़ लीजिएगा।

तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है? फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहाँ पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से, मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं, तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं। और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं, तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने, तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है? पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमजोर तने वाले पेड़ हैं आसपास, तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएं खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था, सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है, हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

0: राजकुमार फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, साधना। और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है। झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है। फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

0: घराना फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहां रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो कौन है हीरोइन।
1: मुझे

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नजारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, खतरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठे और चेतावनी हो तो बहुत नजदीक ना जाएं, समंदर के नजदीक ना जाएं, वो खतरा बहुत ज्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी जमीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है, भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सोने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर ये झूले वाला ही गीत, बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। फिल्म है बहु बेगम।

बहू बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है, तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पिंग ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंगली आज चुनरिया, अपने

के गहरे रंगों में हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थी। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जा घिराए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब, अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com

प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो, इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में, आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए और कोई खास याद है, कोई खास बात है तो जरूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।

तीखे दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: मस्ताना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखिए तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है, संगीतकार मदन मोहन। और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई, अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जरा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ, तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन, और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम?

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां की बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था। तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक

श्वेता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है। राजस्थान का खाली नहर और बारिश होने पर नहर भरे, वहां के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, जरा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहे जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को

ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग

0: जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। आठ कमल भारत के उस समय के आठ प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।
1: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
2: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ इंडियन मार्टिर्स। ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह खूबी बहुत अच्छा।
2: इस बीच

0: आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक

0: कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि

0: वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीजा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलते मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया भानो बोल रही हूँ, गुजरात से। हाँ
0: आलिया बानो गुजरात से। जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? पहन
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: की नमाज पढ़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो
1: दिख
0: है।
1: नहीं दिखता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ
0: मुझे जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सबसे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाई तरफ ये है दाई तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है,
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ,
0: अच्छा।
1: हमारा एक माले का घर है ना वहां कर रही हूँ,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
0: अच्छा, मतलब आप पहली
1: चल
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती
1: हाँ
0: हैं ये सब?
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है किस तरफ जाना है किस तरफ आना है तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह
1: खुश,
0: से लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ, कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
0: जी
1: ही क्या हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती, मैं ऐसा
0: देखिए
1: सोचती हूँ ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ही ले
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होंगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का, अंदाज
0: अंदाज फिल्म
1: है
0: का
1: ना।
0: जी
1: हाँ आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लगे है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात
1: शायरा
0: है
1: हूँ
0: जी।
1: जी एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें,
0: पेन नेम है आपका लहरें।
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी शुरू में, चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए साथ बैठ।

0: गैग, मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
1: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
0: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
1: जी।
0: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
0: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
1: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
0: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
1: ये बात
0: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो
1: जी
0: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
1: बिल्कुल
0: सुनाइए। और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
1: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हो, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
0: जी बिल्कुल, मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
1: जी,
0: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है। हाँ
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: गुजार
0: के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम।
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा
1: हाँ,
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी को
1: बयान नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, किससे बात हो रही है
1: हेलो
0: हमारी?
1: जी, मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। जी
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से। जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए
1: जी,
0: हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी, तो बताइए
1: जी,
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी,
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में।
0: जी तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: बढ़िया, आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं?
1: हाँ,
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है। खो
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।

0: तो विजया जी, मैं ये जानना
1: हाँ
0: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए,
0: जी, ये तो
1: और
0: कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना
0: जी
1: उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी
0: क्योंकि आप
1: और
0: टीचर।
1: उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी कि उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने
0: जी
1: आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई
0: जी
1: में। हाँ,
0: जी
1: ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं,
0: जी
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख
1: हाँ,
0: और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
0: जी
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं,
0: जी
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
0: जी
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
0: जी
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही हैं ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन
0: जी
1: हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा,
0: जी यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
0: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सबा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, शांति
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: राजपूत से दी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर से।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा
1: कुछ
0: है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही
0: जी
1: में रहते हैं, कुछ नहीं।
0: जी हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैम, मैं जो विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है।
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02226702888, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली अल्हड़ चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी, किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे।

बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है।

प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है, प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है,

0: प्रेम को नहीं समझ पाते, वे खुद टूट जाते हैं। प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना। उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी

से संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली, अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

0: करता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस बदलते मौसम में और बारिश के इस मौसम में आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं बिना देर किए अपनी चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन हमारे इस अंक में। दोस्तों, प्रतिवर्ष 3 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, साथ ही माउंट एवरेस्ट विजय दिवस। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पे, यानी वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे। विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना और लोगों को कपड़े, जूट और कागज के थैलों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। ये दिवस पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना, पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना, पुनः उपयोग किए जाने वाले बैग अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना और वन्य जीवों और समुद्री जीवों की सुरक्षा करना तथा स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देना इस दिवस के मुख्य उद्देश्य हैं। दोस्तों, प्लास्टिक बैग के यूज से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने से मिट्टी और जल प्रदूषण बढ़ते हैं, यानी प्लास्टिक बैग मिट्टी और जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं, नालियों को जाम कर देते हैं, पशु और समुद्री जीव इन्हें खाकर बीमार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु तक हो सकती है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता, इसीलिए वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है, मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, प्लास्टिक बैग के और भी क्या विकल्प हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। प्लास्टिक बैग के विकल्प में कपड़े के थैले, जूट के बैग, कागज के बैग और अन्य पुनः उपयोग योग किए जाने वाले बैग, यानी रीयूजेबल बैग। दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? खरीदारी के लिए अपना कपड़े का बैग साथ रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, प्लास्टिक कचरे का सही निपटान और पुनर्चक्रण करें, दूसरों को भी प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए जागरूक करें। इस दिवस के महत्व की बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करता है, जैव विविधता और वन्य जीवों की रक्षा करता है, साथ ही स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में योगदान देता है। दोस्तों, साथ ही आज हम मना रहे हैं माउंट एवरेस्ट विजय दिवस। माउंट एवरेस्ट विजय दिवस प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस भारत के महान पर्वतारोही ब्रिगेडियर सर जॉन डियास की स्मृति में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्वतारोहण साहस, धैर्य और रोमांचक खेलों के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। आइए आपको बताते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में।

बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। ये नेपाल और चीन यानी तिब्बत की सीमा पर हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, जो नेपाल के थे, उन्होंने 29 मई 1953 को पहली सफल चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो है बछेंद्री पाल, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता है मलावथ पूर्णा, जो 2014 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। दोस्तों, इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य पर्वतारोहण को बढ़ावा देना है, युवाओं में साहस और आत्मविश्वास विकसित करना, रोमांचक खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना, साथ ही प्रकृति और पर्वतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विजय साहस, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। यह हमें चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विजय दिवस पर चर्चा बस यही तक।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: युववाणी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा। वार्ताकार है अंजलि।
4: नमस्कार, मैं अंजलि आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो केवल वर्तमान में ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। विषय है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा। मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा है। जल, वायु, भूमि, वन, नदियाँ और जीव जंतु ये सभी हमारे अस्तित्व का आधार हैं। किंतु आज बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है। भारत ने भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देना है। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का अर्थ क्या है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का अर्थ है कि ऐसे व्यवहार आदतों को अपनाना जिनसे प्रकृति पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसका मतलब है कि पानी का सही उपयोग करना, बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करना, पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, जरूरत के अनुसार ही वस्तुओं का उपयोग करना है। साथियों, सरल शब्दों में कहे तो प्रकृति से उतना ही ले जितनी हमें आवश्यकता हो और उसे सुरक्षित रखने में हम अपना योगदान दें। साथियों, आज पर्यावरण की स्थिति हम देखते हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, कभी बेमौसम बारिश होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं और हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। इन समस्याओं का मुख्य कारण केवल उद्योग या सरकार नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी हैं। यदि हम रोज एक प्लास्टिक की बोतल फेंकते हैं, अनावश्यक बिजली खर्च करते हैं या पानी बर्बाद करते हैं तो हम इस समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि हम अपनी आदतें बदले तो हम समाधान का हिस्सा भी बन सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपने गौर किया होगा, आज का हमारा विषय पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा विषय पर है। युवा क्यों महत्वपूर्ण है? भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवाओं की है।

0: आज के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं में ऊर्जा है, एक नई सोच है और बदलाव लाने की क्षमता है। यदि युवा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले, पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, तो वे अपने परिवार पड़ोसी को जागरूक कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। आज भी बहुत से युवा प्लास्टिक मुक्त अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं और साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान में बदलाव लाने वाली शक्ति भी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें मिलकर अपनी जीवन शैली में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं। आइए अब हम इस पर गौर फरमाते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिकों से बचें, कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें और पानी की अपनी बॉटल को साथ रखें। बिजली की बचत, कमरे से घर से निकलते समय पंखा और लाइट बंद करें, एलईडी बल्ब का उपयोग करें और अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू ना रखें। पानी बचाएं, हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए, नल खुला ना छोड़ें। वर्षा जल संचय जैसी तकनीकों को ये बढ़ावा देती है। जहाँ संभव हो वहाँ हमें बस, मेट्रो, साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता बनानी चाहिए। इससे ईंधन की बचत और प्रदूषण भी कम होता है। हर युवा यदि साल में एक या दो पौधे भी लगाए और उनकी देखभाल करे तो यह एक बड़ा योगदान होगा। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। जरूरत से ज्यादा खरीदारी ना करें, ऐसी वस्तु खरीदें जो टिकाऊ हो और जिनका उपयोग हम बार-बार कर सकें। दोस्तों, आज तकनीक भी पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रही है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑनलाइन सेवाएं और स्मार्ट उपकरण जो ऊर्जा की बचत कर रहे हैं। युवा तकनीक को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वे इन नव विचारों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रिय साथियों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली कोई बड़ी या कठिन चीज नहीं है। यह छोटे छोटे बदलाव से शुरू होती है। यदि आज का युवा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बन जाए तो अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर पृथ्वी मिल सकती है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, संसाधनों का सही उपयोग करेंगे और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और युवा इस विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार थी अंजलि, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: दोस्तों, बरसात और मौसम बदलने के समय आपको पता है कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं? तो आज का ये अंक आपके लिए। बरसात और मौसम बदलने के समय जल जनित यानी वाटर बॉर्न तथा मौसमी यानी सीजनल रोग तेजी से फैलते हैं। इनसे बचाव के लिए स्वच्छता, सुरक्षित पानी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। आपको ये जानना होगा कि जल जनित रोग यानी वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन से हैं। दूषित

पानी और भोजन के कारण फैलने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस और डायरिया। और मौसमी यानी सीजनल रोग कौन कौन से हैं? तो मौसम बदलने या वर्षा के समय होने वाले प्रमुख रोग हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, इन सभी को कभी भी हल्के में मत लीजिए। इनसे बचाव के उपाय जरूर ध्यान रखिए। केवल उबला हुआ या शुद्ध या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए। भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही खाएं। खुले में बिकने वाले कटे फल और दूषित भोजन से बचें। घर और आसपास सफाई रखें और कहीं भी किसी भी चीज में पानी जमा न होने दें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी, रिपेलेंट और पूरी बांह के कपड़े पहनें। पानी की टंकियों और कूलर को नियमित रूप से साफ करें। कचरे का सही तरीके से निपटान करें। बुखार, दस्त या उल्टी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आवश्यकता अनुसार टीकाकरण कराएं और चिकित्सकीय सलाह का पालन करें। दोस्तों, यदि आप इनसे पीड़ित हैं तो आपको इन लक्षणों पर ध्यान देना होगा। अगर बुखार, उल्टी और दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी या त्वचा पर चकत्ते जैसे कुछ निकल रहे हैं तो ये डेंगू के भी लक्षण हो सकते हैं या सीजनल या मौसमी रोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके प्रति जागरूक हैं तो इन रोगों से रोकथाम हो सकती है। परिवार और समाज भी स्वस्थ रहेगा। अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी कम हो जाती है। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है आपकी जागरूकता से। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें, स्वच्छ पानी पिए, हाथों की सफाई करें, साफ भोजन लें, मच्छरों से बचाव और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जल जनित और मौसमी रोगों से बचाव पर चर्चा बस यही तक।

तो दोस्तों अब दीजिए अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की अनुमति। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम घरनी।

सब बहिन लोगन के राम राम। और बताए बहिन लोगन, का हाल समाचार बाप लोगन का? उम्मीद बा कि आप सब लोगन स्वस्थ और मस्त हुई हैं। बहिन धीरे धीरे देखे हैं बरसात का मौसम शुरू हो चुकल बा। अब देखा बरसात में भी काफी बहुत ध्यान देवे के जरूरत बा। कहे कि देखा साफ सफाई हो या रख रखाव पर विशेष ध्यान देवे की जरूरत होला इस समय। और कहे से देखे यही समय ही मच्छर माछी और तरह तरह के जीव जंतु विषैला निकललन, तो हम सावधान रही एकर जरूरत होला। बहिन ये समय देखे हम लोगन जितना सावधान रहब उतने सुरक्षित रहब। और एक खातिन देखे ये समय संक्रामक रोगन से बचे के खातिन जगह जगह जागरूकता अभियान चलावल जात बा। और हम लोगन भी ये अभियान में भागीदार भी बनी और जागरूक भी हुई, तभी ये अभियान चलावे के फायदा हुई। बहिन देखा अब 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनावल जाता है। और पेड़ लगावा, पेड़ बचावा, धरती के हरा भरा बनावा, यह बा पूरा सप्ताह का मंत्र। यानी कि वन महोत्सव का देखें अब शुरुआत 1950 में KM मुंशी जी, जवन की वो समय कृषि मंत्री रहलन, जी शुरू करे रहलन। और देखा इस शुरू करे के पीछे का उद्देश्य लोगन के पेड़ लगावे खातिर प्रेरणा देवल, और लगावल ही नहीं पेड़ ओकर सुरक्षा भी करे के है। बहिन जैसन कि सभी जानते हैं कि बरसात में कोनो भी तरह के पौधा लगावा तो वो जल्दी से लग जाला, एक खातिर ही देखा बरसात का मौसम के चयन कर गइल बा। और कारण देखा पेड़ लगावल आसान बा, बचावल मुश्किल, एक खातिर 5 नियम अपनावा तो पेड़ सुरक्षित बच सके। अब देखें बरसात में पेड़ लगावे, जैसे कि अभी हम कहने कि बरसात में ही काहे कहल जाला, काहे कि देखा बरसात हो अपन लगातार हुए से जो अपन माटी का जन जल स्तर बा वो बढ़िया बनल रहेला। और जो गीलापन बा मट्टी का वो जो पौधा के जड़ के मजबूत करे में बड़ा सहयोग प्रदान करेला। और दूसरा देखा जब बरसात शुरू होए के पहले अपन गड्ढा खोद दें और ओमें देखा गोबर का खाद डाल दें, जैसे अपन जो पौधा हम लोगों लगावल जाए तो वो बड़े आसानी से अपन वो पौधा पकड़ ले। और जब बरसात का पानी ऊपर पड़ा ला तो अब सोने पे सुहागा जैसन काम हो जाला। और साथ में देखा अपन जो पौधा हम लोगों लगवले हैं ओकर घेराव भी जरूरी होला। कहे के मतलब बाकी बकरी गाय से बचावे के खातिर कांटा हो चाहे जाली हो ओके लगा के रखे के चाहिए। और साथ में देखा 3 साल तक विशेष ध्यान दे, पानी प्रतिदिन डाले के चाहिए। और देखा पेड़ का नाम रख के लगावा ना, जैसे कि अम्मा का नीम, बाबा का बरगद, ऐसे लगाओ, यही से बढ़ जाला और केहू काटला नहीं। अब देखा वन महोत्सव मनावे का फायदा है इहो जान लेवल जाए। ऑक्सीजन मिली, बारिश पर्याप्त मात्रा में हुई, गर्मी कम पड़ी और आय भी प्राप्त हुई। जैसे देखा शीशम के पेड़ 15 साल में एक पेड़ देखा 15,000 से 20,000 तक देवला। अब देखा यही से अब जैसे अब जो एक भोजपुरी में एक नारा बा हम तो कहते हैं बहिन लोगों के, आप लोगों के बताई, हरियर बा त धरती बा, पेड़ बा त जिंदगी बा। और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर हाथ में पौधा उगाई, माई के नाम पर नीम लगावा, अब बाप के नाम पे बरगद बसावा, आज लगावा तक कल छाया पाई और अगला पीढ़ी के वरदान दियाई।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR।

0: वही लोग देखे गीत हम लोगन सुनल गई और देवल जाए बहुत धन्यवाद, कितना बढ़िया आप मन मन सब फरीच हो गई एकदम। अब देखा गीत सुने के बाद ना अब देखा जानकारी के बात करल जाए और देखा जैसे कि वन महोत्सव सप्ताह महत्वपूर्ण बा जीवन के सुरक्षित रखे के खातिर, वही प्रकार से जनसंख्या जागरूकता भी महत्वपूर्ण बा। जनसंख्या जागरूकता आज का सबसे बड़ी आवश्यकता है। ए विषय पे जो जवन के श्री कृष्ण देव कुमार पांडे जी जवन हुआ उनसे देखा बातचीत भइल बा अपने राष्ट्रीय बहन का, तो हम तो कहते हैं ना कि बिना देर के लिए आवे इनकर जानकारी सुनल जाए फिर आगे हम लोगन बातचीत करल जाए।
1: बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और उनका सर्वांगीण विकास ही देश की वास्तविक प्रगति का आधार है, लेकिन जब जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार जैसे संसाधनों पर दबाव काफी हद तक बढ़ जाता है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। और ऐसे में जनसंख्या संतुलन, परिवार की जिम्मेदारी और बच्चों के उज्जवल भविष्य के संबंध को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो चलिए इसी संदर्भ में इस महत्वपूर्ण विषय पर एक अनुभवी शिक्षक से हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृष्णदेव कुमार पांडे जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय करगरा चोपन सोनभद्र में बतौर शिक्षक कार्यरत हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद मैम। नमस्कार
1: सर, आप एक शिक्षक हैं तो आज के समय को देखते हुए बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों को किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए इसके बारे में बताएं।
2: आज के बच्चों के भविष्य को ध्यान में देते हुए अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए मैम, और अभिभावक की भूमिका बहुत बड़ी नहीं, लेकिन इसमें से हम लोग जो विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो अभिभावकों की भूमिका ये होनी चाहिए कि बच्चों को समय से स्कूल भेजें
1: जी।
2: और बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं जैसे जूता, मोजा, ड्रेस, बैग और किताबें कापी तो मान लीजिए स्कूल से भी मिलती है
1: जी जी,
2: और उनको जो है पेन की जरूरत होती है, तो पूरी व्यवस्था के साथ वो ससमय बच्चों को विद्यालय भेजें, तभी हम लोग जो है बच्चों के भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे। और बच्चों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए यदि अभिभावक नहीं तैयार रहेंगे
1: जी।
2: इस समय तो सरकार की ऐसे ऐसे सिस्टम है जिसमें शिक्षक को यह आदेशित किया गया है कि यदि अभिभावक नहीं भी भेज पाते हैं तो आप लोग घर घर जाकर के भी उनके बारे में पता लगाइए कि वास्तव में क्या दिक्कत है
1: जी,
2: क्या उनको परेशानियां हैं जिसके वजह से वे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग जो है फोन करके भी उनके बारे में पूछते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आए और उनकी क्या परेशानियां हैं, और जहां तक संभव होता है हम लोग जो है अपने से स्वयं से भी उनकी समस्याएं दूर करते हैं। और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी जो भी बच्चों की आवश्यकताएं हैं उनको जो विद्यालय में बच्चों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उपलब्ध हैं, तो हम लोगों की तरफ से जो है बच्चों के विकास के लिए हमेशा हम लोग आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं।
1: सर आपने बहुत सही बात कहा कि आप लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक अभिभावक उनके जो माता पिता हैं वो अगर अपना प्रयास नहीं दिखाएंगे, अपना एफर्ट नहीं करेंगे, तो बच्चे व्यवस्थित तौर पर स्कूल नहीं आ पाएंगे। और ये बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की ओर से कि आप लोग बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण है उसका आप पता लगाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं स्कूल में आने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सर एक समस्या अक्सर देखने को मिलती है इस जनसंख्या वृद्धि की परिस्थिति में कि पेरेंट्स अपने सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसे में बच्चों के सर्वांगीण विकास से तो माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं?
2: मैम ज्यादा बच्चे अगर रहते हैं तो माता पिता जो है अच्छे से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं
1: जी जी।
2: यह जो है जनसंख्या वृद्धि की ओर इंगित करता है, और जनसंख्या अगर लिमिट में मतलब माता पिता अगर बच्चे जो है एक हिसाब से रखेंगे दो या तीन, तो हमारे समझ से उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके पढ़ने लिखने की सुविधाएं और उनके जो है खान पान की सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाओं को अच्छे से ध्यान रख पाएंगे
1: बिल्कुल।
2: लेकिन अगर बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे 7-8 या 9 बच्चे ऐसे रहेंगे तो उनको जो है कहीं न कहीं से कमी महसूस होगी कि बच्चों पर हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि तुम कब घर आए या कहाँ गए थे, तो वो अपने कमाने खाने में व्यस्त हैं और बच्चे जो है

0: अपने में व्यस्त हैं, तो बच्चों का जो विकास का जो नजरिया है, माता पिता को समझना होगा कि हम बच्चों को कैसे परवरिश अच्छे से दें, उनके रहन सहन पर हम अच्छे से ध्यान दें कि बच्चे कर क्या रहे हैं। ये जो संसाधन है, संसाधन तो सीमित हैं,
1: बिल्कुल,
0: और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किए, माता पिता जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किए, तो बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश दे पाना बड़ा मुश्किल का काम होगा।
1: बिल्कुल, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात की जानकारी एक तो पहले मिलेगी नहीं, ऊपर से जो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास के लिए जो हर तरीके से ध्यान देने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं वो चीज खत्म हो जाएगी।
0: जी
1: बिल्कुल सर, बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रख सकते हैं? अभी जैसा कि जनसंख्या वृद्धि तेजी के साथ बढ़ रहा है, आपने जैसे कहा, और हम लोग भी इस बात को देख रहे हैं, तो ऐसे में हम किन बातों का ख्याल रखें कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मविश्वास भी उनका मजबूत हो?
0: बच्चों की मानसिक स्थिति तभी ठीक बन पाएगी मैम, जब माता पिता उनके विचारों को समझेंगे। कभी कभार बच्चा अपनी आवश्यकता माता पिता के सामने रखते हैं, तो माता पिता को चाहिए कि उन पर ध्यान दें कि बच्चा क्या क्या डिमांड कर रहा है।
1: जी।
0: लेकिन माता पिता जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित हैं, उनके पास संसाधन कम है, जिसके वजह से बच्चों की मानसिकता को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, तो बच्चों के बिगड़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं,
1: पूरा हो जाता है। जी।
0: और बच्चों के शारीरिक की बात रही तो बच्चे जो है तभी हृष्ट पुष्ट होंगे, उनका विकास तभी अच्छे से होगा जब उनको खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, ये सब भौतिक सुविधाएं जो है उनको पर्याप्त रूप में मिलना चाहिए, तभी वो सब बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन माता पिता चूंकि बहुत ज्यादा बच्चे होने के कारण अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका शारीरिक रूप से भी उतना अच्छा संतुलन बन नहीं पाता है, जिससे उनके शारीरिक विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं, अच्छे से उनका न तो शारीरिक विकास हो पाता है और न ही मानसिक विकास हो पाता है, और जब शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े रह जाएंगे तो उनका सामाजिक विकास भी कहीं न कहीं से,
1: और आत्मविश्वास भी कहीं न कहीं बढ़ ही नहीं सकता।
0: आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से जैसे बहुत ज्यादा बच्चे हैं,
1: जी,
0: तो वो सब आगे बढ़ रहे हैं, उनके पहले तो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए, शारीरिक रूप से भी अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाए, फिर बड़े हुए बच्चे जैसे तैसे मान लीजिए पढ़ भी लिए, तो पढ़ने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी विकट समस्या आती है रोजगार की।
1: जी।
0: अगर रोजगार उनको नहीं मिल पाया तो बिल्कुल हेजिटेट हो जाते हैं सब।
1: जी।
0: और उनके एकदम टेम्पर्ड हो जाते हैं सब बच्चे कि अब क्या करें कैसे करें, तो इस अवस्था में बच्चे जो है कहीं न कहीं से कुछ गलत गतिविधियां जो है करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जिसके वजह से माता पिता को दुख का अनुभव करना पड़ता है कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से, मतलब उनको रोजगार की उतनी सुविधा नहीं मिल पाई, तो फिर आगे चल के उनको ये चिंता होने लगती है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा। यदि परिवार के लिए बारे में उनकी चिंता होने लगती है तो फिर शादी विवाह सामाजिक रूप से लोग भी ताने मारने लगते हैं, तो बच्चों को बड़ा कुढ़न महसूस होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि उतना ही बच्चे अच्छे जिनकी जो है अच्छे तरीके से हम लोग परवरिश कर सकें।
1: जी बिल्कुल, और बच्चों में मतलब एक अगर आप पूरी तरीके से ध्यान भी देते हैं तभी उनमें आत्मविश्वास भी मजबूत होगा, और वो जो गलत रास्ते का जो चुनाव कर लेते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
0: जी।
1: सर, जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है? आप एक शिक्षक हैं तो इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या राय है?
0: जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की महती भूमिका है, जो ये नई टेक्नोलॉजी चल रही है।
1: जी।
0: हम लोग एक शिक्षक हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, बच्चे बच्चियों को भी हम लोग जो है सजेशन देते हैं कि ऐसे तरीके से रहो ताकि कम से कम पहले शिक्षा अपनी पूरी कर लो, उसके बाद फिर ध्यान देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले शिक्षा पूरी करके रोजगार पालो, तुम्हारे पास पर्याप्त जो है संसाधन हो, जब संसाधन रहेंगे तो तुम्हारा परिवार अच्छे से चल पाएगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, जिनको हम लोग जो है बच्चों को समझाते हैं, और जनसंख्या वृद्धि एक हिसाब से होनी चाहिए, जैसे स्पष्ट निर्देश है कि हम दो, हमारे दो अगर रहेंगे तो अच्छे से बच्चों की परवरिश कर लेंगे। अब वैसे पुराने जमाने में लोग जो है जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं देते थे, स्वास्थ्य पर, तो जिसके कारण उनको जो है बहुत सारी
1: दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
0: लेकिन इसमें बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो जिसके वजह से जनसंख्या वृद्धि को आराम से रोका जा सकता है और पुरुषों में भी वैसेक्टोमी की व्यवस्था है, नसबंदी करा सकते हैं। महिलाओं में भी ट्यूबेक्टोमी की व्यवस्था है, नसबंदी वो भी करा सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भी संसाधन हैं जिसके प्रयोग से चाहे तो जनसंख्या वृद्धि पर बड़े आसानी से रोक हम लोग लगा

0: सकते हैं
1: और इन सारी सुविधाओं की जो जानकारी है तो जो वो आपसे एक शिक्षक है और शिक्षकों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, बताया जानकारी दी जाती है। सर, अंत में श्रोताओं के लिए जनसंख्या नियंत्रण और खुशहाल परिवार के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: हम जो है ये ऑल इंडिया रेडियो ओबरा के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि जब छोटा परिवार रहेगा तो परिवार खुशहाल रहेगा
1: जी,
0: वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, कहीं न कहीं उसे पूरे संसाधन को पर्याप्त रूप से उसके पास एक व्यवस्था अवसर मिलेगा जिससे वो अपने संसाधन का उपयोग करेगा तो खुशहाल रहेगा। और सबसे बड़ी बाधक है जनसंख्या वृद्धि ही
1: जी।
0: तो जनसंख्या पर अगर कंट्रोल, हम माता पिता से आग्रह करते हैं कि अगर जनसंख्या पर आप लोग अगर कंट्रोल रखते हैं तो खुशहाली की जिंदगी
1: बिल्कुल, परिवार भी खुश रहेगा और एक खुशहाल समाज का निर्माण होगा और देश हित में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा।
0: यह गरीबी जो है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो गरीबी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, रोजगार की भी समस्या बढ़ रही है, उतने कल कारखाने उनके जो है रोजगार के अवसर नहीं है जिसकी वजह से बच्चों में जो है बहुत ज्यादा टेम्पर्ड बच्चे हो जा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि कतई स्वीकार नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा सर कि जनसंख्या वृद्धि, इस पर हम नियंत्रण करके बहुत चीजों को संभाल सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। वाकई सर बहुत अच्छी जानकारी दी इस बातचीत के माध्यम से कि जनसंख्या नियंत्रण करके हम मानसिक और
0: आर्थिक
1: और सामाजिक हर चीज में प्रगति कर सकते हैं और एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आज इस खास बातचीत के लिए कृष्णदेव कुमार पांडे जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय करगरा चोपन सोनभद्र में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं, सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के भी तरफ से कि कृष्णदेव कुमार पांडे जी इतना बढ़िया जानकारी दिलन है और देखा उम्मीद बाकी सब वही लोगन ध्यान से उनकर बात जरूर सुन ले हुई है और देखा इनकर बात ध्यान देवे लायक भी रहला कि कहें कि देखा अपन छोट परिवार होला ना ये बहुत ही समझ लें कि अपने परिवार के खुशहाल रखे के बहुत बड़ा मंत्र बा। कहें कि देखा जब बचवा अपन जब पैदा होला ना वही समय से देखा बचवा के रहन सहन उनकर खान पान सब हम लोगों पर ही निर्भर हो जाला। कहें कि देखा केहू भी जन्मते से नहीं कमाला, ओके पाले के पड़ला, पोसे के पड़ला, जब बड़ हो जाला तब वो कहीं जाके अपने पैर पे होला। एक खातिर देखा हम लोगों के पहले से बचपन के अपन उज्जवल भविष्य का कामना करे के चाहे। और देखा एक बात और कि बचवा लोगन जन होला ना बहन लोगन कच्ची मिट्टी के समान होलन, जितना और जैसन आप उनके सिखाई है उतने सीखी है। और एक खातिन कहा जाला कि बच्चों के अच्छा संस्कार सिखावे के चाहिए, बढ़िया कहानी सुनावे के चाहिए और घर के बड़ बुजुर्गन का सम्मान करे सिखावे के चाहिए ताकि वो आगे अपने जीवन में कभी गलत रास्ता ना चला और हमेशा सही कही मार्ग चुने। यही से कहा जाला छोट परिवार सुख का आधार और छोट परिवार रहे से अपन परिवार का पूरा ध्यान अपने बचपन पे ही रखल जा सकेला और परवरिश भी बढ़िया मिलेला। और देखें साथ में जैसे अपने घर परिवार में अगर कम आमदनी बा, पैसे का बात अगर ले लें जैसे कि 1000 रुपया अगर हम पावत हैं 8 लोगों का खाना पीना बा, अगर हम लोग 4 लोग घर में हैं तो वो बचा जो पैसा बा वो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे हम लोगों खर्च कर सकीला, समय का पूरा ध्यान दे सकीला अपने बच्चों पर। जैसे अधिक लोगों में ज्यादा समय का जरूरत पड़ला, अगर कम परिवार बा तो रोज समझ लें कि अपने बच्चों में हम लोगों बैठ के उनके कथा कहानी सुना सकीला, उनका जो स्कूल का जो कक्षा कार्य मिलत बा ओके हम लोगन पूरा करा सकीला, पढ़ाई पर भी हम लोगन ध्यान दे सकीला। कहें कि देखा ज्यादा परिवार रहे पर बच्चा लोगन का 8 पढ़ते पढ़ते बच्चा लोगन पढ़ाई छोड़वा देवल जाला, लेकिन अगर कम परिवार बा बच्चा कम हुआ और देखा अपन आमदनी बढ़िया बा तो बच्चा लोगन के स्कूल भी अपन पूरा पढ़ावल जा सकेला, साथ में ट्यूशन भी लगा सकलन, कोचिंग भी लगा सकेलन, उनकर कहे के मतलब जितना भी जरूरी चीज बा आप उनकर पूरा कर सकेलन, साथ में सेहत का भी पूरा ध्यान दे सकेलन, माँ का सेहत भी सही रही। अगर देखा कहे की लंबा परिवार रहला ज्यादा अगर बचवा घर में बा तो हर साल 2 साल में एक बच्चा अगर जन्म लेत बा तो माँ का भी देखा वो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रही। अगर 3 साल 4 साल 5 साल के अंतर पे 2 बच्चा खाली जन्म ले तो देखा अपन जो वही लोग नहीं वो भी स्वस्थ रही है। तो कहे का मतलब बा कि अगर अपन परिवार स्वस्थ रखे के बाद तो अपन छोट परिवार का ये जो मंत्र बा एक ही अपनावे के चाहिए। और देखे उनके अपन श्री कृष्णदेव कुमार पांडे जी के देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक भोजपुरी फिल्म के गीत माई रखिया सिनुरवा आबाद के गीत के साथ

वही लोगन गीत देखा कितना बढ़िया बा कि अब देखा अपन बैठकी का समेटे का भी हो रहा बा बकत और गीत तो विधि नहीं भरत बा और देखा लेकिन चलक तो पढ़वे करी और देखा हम तो चला चला तो एक ही बात कहब कि जल के अपन संरक्षित करें और देखा कहे कि बूंद बूंद से ही सागर भराला तो ए बदे अपने बहन लोगन ई बात का जरूर ध्यान रखें और चला चला तो अपने गुलाबो बहन के दे इजाजत सब बहन लोगन के राम राम।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। कृपया आप प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सवेरे जम्मू कश्मीर के पहलगाम आ बालतल राय से शुरू हो गई। पूरा देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन के तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करी हैं। ये बिच्चे तीर्थयात्रियों के लिखल एगो चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालाना अमरनाथ यात्रा के देश को आध्यात्मिक रिवाज आ सांस्कृतिक एकता में एगो शाश्वत अध्याय बतौले।
1: पत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षा बंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 9वां उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। एहि मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि ई आम महोत्सव खाली प्रदेश नहीं बल्कि देश के किसानों बदे अपने उत्पादन के प्रदर्शनी का एगो मजबूत मंच हो।
2: मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते, एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। AI, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने के दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है जो आज की आवश्यकता है।
0: ऐसे पहले मुख्यमंत्री अजुए लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन आ प्रबंधन अकादमी के 464 करोड़ रुपया से बेसी के लागत से बनल नया परिसरों का लोकार्पण कैने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एगो उच्च स्तरीय बैठकी में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यन का समीक्षा कैने। वहाँ के आश्रय गृहन सह प्रशिक्षण केंद्रन आ हाफवे होम में रहे वाले संवासी लोगिन के भरण पोषण बदे अनुदान राशि 2000 रुपया से बढ़ा के 3000 रुपया हर महीना कैले के फैसला कैले हैं। एगो रिपोर्ट।
3: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: एटा जिला के बागवाला थाना क्षेत्र में किलार मऊ गांव के लगे काली देर रात एगो सड़क दुर्घटना में 5 जने का मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं। हमारे एटा प्रतिनिधि बताने कि फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रहल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एगो बस तकनीकी खराबी के नाते सड़क के किनारे खड़ा रहल। यही दौरान पाछे से आ रहल एगो तेज रफ्तार कैंटर बस के ठोकर मार देहलस। ए टक्कर के बादे एगो औरियो गाड़ी दुर्घटना के चपेटा में आ गई। एटा का DM अरविंद

0: सिंह बतौलें कि घाही लोगन के समुचित इलाज के इंतजाम कैल गैल बा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार ऐप के जरिए आधार में ईमेल के सोझे अपडेट का सुविधा निशुल्क उपलब्ध करौले हो। ये सुविधा 1 जुलाई से शुरू होके 6 महीना खातिर लागू बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: आपों के राम राम मगेलू भैया, पंचेती के डुगडुगी भैया भजल, और पंचेती के डुगडुगी भजल बात भैया देखा, बातचीत के माध्यम से बहुत सारा जानकारी सुने और समझे के मिली भैया।
2: काहे नहीं और मुराओ भैया, देखा जब पंच भैया लोग जुटे जालन तो देखा सबके मुँह कुछ न कुछ सुने के मिलल बा, गुने के मिलल बा, और देखते हवा इसमें मौसम के मिजाज हो, मौसम के मिजाज जोन चलत बा, कहीं देखा घामे होत बा और कहीं देखा हवा बयार के साथे तेज बारिश भी हो रहल बा।
1: बिल्कुल भैया,
2: ऐसने में हम लोगों के बहुत सजग और सतर्क रहने के जरूरत बा। अब देखा तू को सोचत हुई बा कि सजग और सतर्क कैसे रहे के बा
1: भैया।
2: देखा ये समय जवन समय चल रहल बा, जैसे देखा आज तो हो गई 3 जुलाई,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन देखा हम लोगन के सप्ताह में कुछ ऐसा काम कर देवे के बाद जेकरा से आवे वाला पीढ़ी के भी फायदा मिलत रहे और हम लोगन के तो फायदा मिलवे करेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हो भगेलू भैया, आपके इशारा हुए भैया देखा वन महोत्सव के, और भैया 1 जुलाई से 7 जुलाई तक भैया देखा वन महोत्सव मनावे के उत्सव चलत हुए। वन महोत्सव के मतलब भैया ये हुए की पेड़ों का पेड़ के उत्सव भैया, भैया देखा एक में बढ़ चढ़ के हम लोगों के भी भागीदारी निभावे की जरूरत हुए, और निश्चित रूप से भैया देखा जब वन रही तबे भैया देखा हम लोगन रह सकेला, जीव जंतु रह सकेला, और निश्चित रूप से भैया देखा वन महोत्सव मनावे के जौन कार्यक्रम बा 1950 से भैया देखा शुरू भइल रहले, और तत्कालीय कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिक लाल द्वारा भैया देखा ये योजना की शुरुआत कैल गए रहले, और मुख्य रूप से एक उद्देश्य ये है भैया कि अधिक से अधिक लोगन के भैया देखा वन महोत्सव के बारे में बता करके पेड़ लगा करके लगाव के बारे में लोगन के जागरूक करना हुए, और निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन भी अपने ये समय भैया देखा पेड़ लगावत है जा, जोन भी गर्मी में गड्ढा के खुदाई होल रहे ओकर भैया देखा पानी भी समय बरसात हुए, तो निश्चित रूप से हम लोगन के भी पौधा लगा देवे के चाहिए।
2: तो भैया देखा नेकी और पूछ पूछ हम तो ये कह पंच भैया लोगन से
1: का भैया,
2: तो भैया देखा इस सप्ताह में एकदम पौधा लगाओ जरूरी बा, और देखा पौधा के लगावा लेकिन एक नाम से लगावा, जैसे देखा हम लगावत है तो जैसे कहा जाला ना कि एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ बचवा के नाम, एक पेड़ बाबू के नाम, इस तरीके से नाम से अगर भैया पेड़ लगावल जाए
1: हाँ।
2: देखा ओकर सेवा भी बढ़िया से करल जाए, और लगा देवे से मतलब नहीं बा भैया,
1: हाँ।
2: ओकर देख रेख भी करब जरूरी बा, ओकर रखवारी करब जरूरी बा, तबे जा करके पेड़ रही, और यही से कहल गई बा कि जब जंगल रही तो जहान बा।
1: बिल्कुल,
2: तो ऐसे जल जंगल जमीन हम लोगों के सबके बचौले के जरूरत बा। आज भैया पेड़ पालो नहीं रही है, आज जो हम लोग शुद्ध हवा लेते है अपन अंदर जवन सांस लेते है भैया, यो आवे वाला समय में सांस लेवो भी मुश्किल हो जाएगा।
1: एकदम सही कहत हुआ भगेलू भैया, वन महोत्सव भैया देखा अपने प्रदेश में भैया देखा एक लक्ष्य के साथ शुरू भइल हुए, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक भैया देखा 35 करोड़ पौधा लगावे के लक्ष्य रखल गए हुए, जेकरा भैया देखा हम लोगन के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के भैया देखा एकरा पूरा कैले की जरूरत हुए, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में भैया देखा भारत में मानसून के आगमन होकाला, और यही समय भैया देखा एक वन महोत्सव जोन बाकी शुरू होला, और भैया एक से होला का की भैया पर्याप्त पानी मिलला, और जोन भी पौधा लगेला भैया वो पनपे में और बढ़े में भैया देखा सहयोग होला, और एक साथ साथ भैया देखा जोन ग्लोबल वार्मिंग के बात होकाला, जलवायु परिवर्तन के बात होकाला, और एक में भैया देखा वन महोत्सव के भैया देखा बहुत ही बड़ा योगदान।

0: हुए और जोन पौधा लगेला सब तो नहीं लेकिन बहुत पौधा जोन बाकी लगेला बढ़ेला और भैया पेड़ होकेला निश्चित रूप से भैया देखा जोन भी वन महोत्सव के दौरान भैया देखा जोन भी विभिन्न स्कूल हुए सरकारी कार्यालय हुए और गैर सरकारी संगठन भी हुए सब लोगन भैया देखा बढ़ चढ़ के एक में भाग लेवत हुए और निश्चित रूप से भैया देखा लक्ष्य के जोन बाकी हम लोगन हासिल करब और जोन भी पौधा हुए मुख्य रूप से हम लोगन के जोन बाकी छायादार पौधा फलदार पौधा औषधि पौधा और जोन भी स्थानीय जोन पेड़ पौधा हम लोगन के अंचल में बा उनका भैया देखा जोन बाकी हम लोगन के लगावे के प्रयास करे के चाहिए ताकि जोन भी जीव जंतु हुए और जोन भी यहाँ के स्थानीय लोग हुए उनके लाभ मिल सके भैया।
1: तो भैया देखा हम लोगन के पंचायती तो चलते रही लेकिन कुछ ऐसा बात भी बा जैसे कि हम लोगन के मौसम के भी हाल जानब जरूरी बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मौसम के हाल जाने खातिर देखा हम लोगन आज शिव मंगल सिंह जो मौसम वैज्ञानिक हवन बीएचयू वाराणसी के इनसे मुनई भैया बातचीत कैले हवन तो कहता तो भैया लोगन के बीच सुना दिया जाए
0: भैया मौसम के का जानकारी दे दो एकदम बढ़िया सुनल जा भैया।
2: किसान भाई लोग देखे हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ल है और ये समय देखे बरसात भी होता कहीं कहीं बरसात नहीं भी हो लेकिन अपने जनपद का अपने अंचल का मौसम आवे वाला चार दिन में कैसन रही हमार संपर्क आज हो गल बा शिव मंगल सिंह तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से और आज आपसे ही हम लोगन जाना कि आवे वाला चार दिन का मौसम कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार किसान भाइयों। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले दिनों में जो है आसमान में बादल छाए रहेंगे
2: जी
3: जिसके परिणाम स्वरूप हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानसून का आगमन हो गया है और कहीं कहीं अच्छी बारिश हुई है और कहीं कहीं उससे कम हुई है और कहीं कहीं अभी नहीं हुई है।
2: जी जी।
3: तो हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो है ऐसे ही रुक रुक कर मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था किसान भाइयों आप लोगों को कि इस मानसून में इस बार जो है अच्छी बरसात नहीं है
2: जी।
3: और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप उसी के हिसाब से अपने फसलों का चुनाव करें जिसमें कि पानी की आवश्यकता कम हो और जिससे आपका नुकसान कम हो। अगर भाई बात कर लें धान की
2: है
3: तो अभी तो धान का लगभग हम अभी और किसानों से मेरी वार्ता हुई थी तो उन लोगों ने बताया कि सर अभी तो नर्सरी तैयार है रोपाई के लिए हम लोग बस पानी का इंतजार कर रहे हैं। अब भाई प्रकृति के आगे देखिए किसी का कोई जोर नहीं है लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि भाई जो भी बरसात हो रही है उसको आप ऐसा व्यवस्था बनाए खेत में कि पानी जो खेत में आए वो बाहर न जा पाए ताकि आप जो है अपना रोपाई का काम कर सकें और अगर आपके पास थोड़ा सा पानी का व्यवस्था करने का सुविधा हो जैसे ट्यूबवेल हो गया या फिर नाला हो नहर हो गया जैसे होता नहीं है किसान भाइयों तो उसका अगर उपयोग करके आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन अभी आने वाले दिनों में बरसात का तो दिखा रहा है लेकिन अभी कहले की अच्छी बारिश तो उस तरह से अभी नहीं दिख रहा है।
2: बताए बिल्कुल डॉक्टर साहब अभी माने किसान भाई लोगों के अच्छी बारिश का इंतजार करे के पड़ी तो अगर अच्छी बारिश अभी नहीं हो तो वर्तमान समय में सामयिक कृषि कार्य खास तौर से जो अपन अंचल बा डॉक्टर साहब कुछ वहाँ अपन किसान भाई लोग अरहर का बुआई मक्का का बुआई ज्वार बाजरा का बुआई करना और जो श्री अन्न बा ओकर भी बुआई करना तो उनमें कौन कौन खास बात को ध्यान रखना है।
3: देखे भाई जौन भी फसल होला उमन का हो कि पर्याप्त नमी होवे चाहे खेते में तब वे जो अच्छा उपज मिली ठीक बा। तो अगर भाई जैसे कि जौने क्षेत्र में अगर बारिश हो जाता अभी बारिश के तो अनुमान बा कि बारिश होने की संभावना बा लेकिन वही कि बारिश जौन हुई वो रुक रुक के हुई मानसूनी बारिश कहीं इकट्ठा जैसे कि अच्छा बरसात न हुई जौने क्षेत्र में अगर होत बा किसान भाई एकदम सतर्क रहे भाई अगर बरसात हो बा खेते में पर्याप्त नमी बा भाई आप अरहर की बुआई करें भिंडी के जैसे कि भाई इस समय कहा हो कि जो भिंडी का फसल है ना मन कहा कि इसमें फल लगा था फल लगा था तो फल के समय जो तोड़ के बाजारे भेज दे ताकि ऊपर सही से दाम मिल जाए और रह गल की भाई जैसे कि जो साग सब्जी का खेत बा भैया ना मन अगर पानी इकट्ठा हुई तो ऊपर जड़ जौन बा सड़े के।

0: रहेगी, ठीक हो।
1: बिल्कुल
0: जड़ सड़े न और कोनो तरह का रोग व्याधि न आवे। भाई जो सब्जी वाला फसल बा ओमन जल निकास की व्यवस्था करिए तो ज्यादा बढ़िया रही, और ऐसे का हो कि ओमन रोग वोग भी कम लगी हमें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतना बढ़िया आज आप अपने किसान भाई लोगों के जानकारी देने, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद किसान, जय जवान जय किसान।
2: मुराव भी देखा ई रहलन सिमंगल सिंह जो मौसम वैज्ञानिक बीएचयू वाराणसी के, और मुंडई भी एकदम देखा हर तरह से बात फरिया फरिया के पूछलन, और देखा हम लोगन के तो मौसम के जानकारी हो गई, लेकिन पंच भैया लोगन के टकटकी लावे लगे कि आज पंचायती में भैया लोग का लेकर के आयल होन।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो भैया लोगन के बताई देता
3: एकदम भैया, भेंट वार्ता क्रम में फलदार और इमारती प्रजातियों का पौधरोपण करे एक बारे में बाबू राम भैया से अपन भोला भैया के बातचीत भैले हुए ओके सुनल जाए। ओकरे साथ साथ बाजार भाव हम लोग के बसंत कुशवाहा दुद्दी से भेजले हुए ओके भी बाँचल जाए।
2: हाँ भैया देखा ओकरे साथे साथे देखा हम लोग के न सह व्यवसाय के रूप में कैसे आमदनी बढ़ावे के चाहिए, बकरी पालन में बेड प्रबंधन किस तरीके करे के चाहिए, जोन खजुरी गाँव के अवध नारायण गुप्ता भैया हो दुद्धी ब्लॉक के हो।
3: हाँ भैया,
2: तो ऐसे भोला भैया बातचीत के लिए हम एक भी सुन ले और मन मनसाइन के कर करे
3: पंचम प्रसाद उनका संगतिया भैया देखा मन फेर करी है ओके भी सुनल जाए, लेकिन हम तो कहो कि भेंट वार्ता क्रम में फलदार और इमारती प्रजातियों का पौध रोपण करे एक बारे में बाबू राम भैया के कहा कहानगी बा भोला भैया फरिया फरिया पूछे हम लोग सुनल जाए।
2: भैया देखा बाबू राम भैया जो है मूर्ता के रहे वाला हो और दुद्धि ब्लॉक के हो।
3: अच्छा भैया सुनल जाए।
2: हाँ हाँ,
4: किसान भाइयों बहनों अक्सर करके हम लोग सुनते हैं जानते भी हैं कि खाली धरती करे पुकार, वृक्ष लगा कर करें सिंगार, तो वृक्ष कैसे लगा करके सिंगार हम लोग कर सकते हैं खेती पाती के बारे में, और क्या क्या लाभ हम लोग ले सकते हैं, कितना उपयोगी है पेड़ पौधा, फर्नीचर के लिए कौन कौन से पौध रोपण कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ लगाने के योजना चल रही है, इसे जानने के लिए दुद्धि ब्लॉक के मुर्ता निवासी श्री बाबू राम जी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या योजना है आपको इस बार वृक्षारोपण करने के लिए, पौधरोपण के लिए, इनके माध्यम से ही जानेंगे, बातचीत होगी। तो बाबू राम जी आपके आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये पौधरोपण के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो ये जैसे अक्सर करके हम लोग जानते हैं कि पौधे बहुत ही कारगर हैं
5: जी, हाँ,
4: सभी जीव जंतुओं के लिए
5: जी,
4: कारण कि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन मिलते हैं, और बरसात की भी बात आती है तो जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं वहाँ बरसात ज्यादा होती है
5: जी, हाँ,
4: और जहाँ बिल्कुल नहीं है तो बगल बगल से बगल करके बरसात चला जाता है
5: जी।
4: तो ये पेड़ पौधा लगाने के लिए क्या आप कुछ योजना बनाए हैं क्या इस बार?
5: जी हाँ, मेरा नाम बाबू राम है और मैं ग्राम मुर्ता से हूँ, एक खेतिहर
4: जी,
5: और इस साल मैं अपना एक योजना बना रखा हूँ
4: जी,
5: और एक संस्था के लोग भी आए थे हमारे पास और प्रेरित कर रहे थे पौधा लगाने के लिए
4: जी जी,
5: और पहले से मैं सोच भी रखा था कि पौधा लगाऊंगा। तो इसमें दो तरह के पौधे मेरे मन में लगाने को है
4: जी जी,
5: एक तो फलदार और दूसरा इमारती लकड़ी के लिए।
4: अच्छा अच्छा, अच्छा।
5: फलदार में आम, अमरूद, नींबू, कटहल, आंवला, बेल, इस तरह के पौधे खेत में लगाएंगे
4: जी, जी।
5: और वो 20 से 25 फीट के दूरी में रहेंगे जिससे खेती भी करना है हमको।
4: अच्छा अच्छा, उसमें खेती हो सकता
5: जी हाँ, इस तरह के योजना बनाया हूँ। और मेढ़ में किनारे किनारे
4: जी
5: फर्नीचर वाला लकड़ी लगाएंगे।
4: फर्नीचर में क्या क्या उपलब्ध हो पाएगा?
5: फर्नीचर में सागवन, शीशम, महोगनी, इस तरह के संस्था के लोग उपलब्ध कराने के लिए बोले हैं, गड्ढा खुद गया है
4: जी जी,
5: पौधा लगाने के लिए।
4: कितने पौधा लगाने के लक्ष्य बनाए हैं?
5: एक बीघा में 500 पौधा लगाने के
4: अच्छा अच्छा
5: पर्पस से खुदाई हो गया है
4: जी जी जी। तो ये आपके मन में कैसे जगह कि हमको पौधरोपण करना चाहिए?
5: मुझे ये लगा कि खेत तो बहुत है
4: जी,
5: एकाध दो बीघे में पौधा भी लगा दें, आने वाले समय में काम आएगा, और जंगल में पौधा कटते जा रहा है, इसलिए मेरे मन में आया कि पौधा से दो लाभ होगा, एक तो फल से भी लाभ होगा, फल बेचेंगे खाएंगे उससे फायदा होगा
4: जी,
5: और दूसरे जंगल में पेड़ कटते जा रहा है
4: जी,
5: तो पर्यावरण से भी हम लोगों को निजात मिलेगा। और जो बरसात का सीजन आ रहा है, जहाँ देखते हैं कि घनघोर जंगल रहता है वहाँ पर बरसात अधिक होता है
6: जी।
5: और जहाँ गांव है, पेड़ कट गए हैं, वहाँ किनारे हो जाता है बरसात। तो यही मेरे मन में कुछ आया है, इस वजह से मैं अपना ये प्लान बना के चल रहा हूँ।
6: तो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से भी ये बहुत कारगर है।
5: जी हाँ।
6: तो ये जिसे आदमी पहलवा जो है कि हम लोग आश्रम तरफ से चाहे जहाँ से भी पढ़े लिखे के मौका मिले
5: जी,
6: तो अक्सर करके गाना हम लोग गाते थे
5: जी,
6: कि बनवा कटाई कैसे राम राज आई और धरती की शोभा जब चूल्हा में झोंकाई
5: जी जी।
6: तो धरती की शोभा अगर जोन बा की ये हो पेड़ पौधा
5: जी,
6: अगर वो के चूल्हा में काट काट के लगावल जाए तो राम राज फिर कहाँ संभव बा,
5: कहाँ संभव है,
6: हैं?
5: नहीं आ पाएगा।
6: तो इसलिए जो है कि निश्चित रूप से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अब जैसे बात आती है खेती बाड़ी के बारे में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छहल मार देता है और खेती नहीं हो पाती है, तो आपका कैसे उद्देश्य है कि जो है कि इसमें खेती आप कर सकेंगे?
5: हम 20 से 25 फीट के दूरी में आम के पौधा लगाएंगे
6: जी,
5: और उसमें बीच में खेती करेंगे
6: जी जी।
5: जिस दिन बड़ा पौधा हो जाएगा उस दिन अब मुझे फल खुद ही मिलने लगेगा
6: जी जी जी जी।
5: तो पेड़ के नीचे भी हम हल्दी के खेती और अदरक के खेती, रुई कंदा के खेती
6: जी जी।
5: और एक और सुनने को मिल रहा है काली हल्दी,
6: हाँ हाँ हाँ।
5: तो इस तरह के मेरे मन में है
6: जी जी।
5: लगाने के लिए
6: अच्छा,
5: पेड़ के नीचे
6: छाया में मतलब
5: छाया
6: अच्छा
5: नीचे।
6: होता है
5: जी हाँ
6: जी जी। मतलब जो भी कंद है जमीन के नीचे बैठते हैं
5: जी,
6: ये सारे अच्छा उत्पादन होते हैं
5: जी।
6: तो मैंने इसमें भी आपको भय नहीं है?
5: नहीं,
6: कि हमारा क्षति होगा
5: किसी तरह से है नहीं है कि क्षति होगा या नुकसान जाएगा मेरा जमीन, फल से भी आएगा, उसके नीचे जो भी है कंद वाला
6: जी जी, जी।
5: वो खेती करेंगे।
6: तो ये अक्सर करके कभी कभार सुनने को मिलता है कि एक पेड़ सौ पुत्र समान,
5: सही
6: तो,
5: कहावत है। आपने भी जो कहा वो बिल्कुल सही है
6: जी।
5: अगर बच्चा मैं आज मेरे पास है
6: जी,
5: या मेरा ही लड़का है, बड़े होने के बाद बच्चा इधर उधर टाल देगा
6: जी,
5: लेकिन बड़े होने के बाद जो पेड़ मैं लगाया हूँ वो मुझे नहीं टालेगा, वो हर साल फल देगा
6: जी।
5: बच्चा दे ना दे, पेड़ मुझे देगा,
6: पेड़ देगा बिल्कुल बिल्कुल,
5: एक बेटा के समान है।
6: और छाया तो जो है
5: छाया है
6: इफ्रात के
5: अफरात है,
6: 10 समाज भी अगर अगर बढ़ जाए
5: हाँ,
6: तो जोन बाकी छाया भी और ऊपर से जोन फल लगल है वो भी है
5: जी।
6: बिल्कुल अच्छा आपका सोच भी है। तो आपके बात रेडियो के माध्यम से लगभग पूरे सोनभद्र जनपद के लोग सुन रहे हैं
5: जी,
6: तो उन लोग से क्या कुछ रखना चाहेंगे पेड़ पौधा के बारे में?
5: मैं तो यही चाहूंगा और सबसे विनती भी करूंगा
6: जी
5: कि आप फलदार पेड़ भी लगाएं
6: जी,
5: और इमारती पौधा भी लगाएं
6: जी,
5: मेड़ में जो मेड़ खाली रहता है। और मैं यही तो चाहूंगा सबसे किसान भाइयों से
6: जी जी
5: कि आप जरूर पेड़ लगाएं
6: जी,
5: जिससे हम लोगों का गरीबी भी दूर होगी, आमदनी बढ़ेगी और इससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा। मैं यही सबसे आग्रह निवेदन विनती करता हूं।
6: अक्सर करके देखा जाता है कि सुबह होते ही लोग कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर कुछ करते हैं और उधर से हरा हरा पौधे काट करके कभी घुरान करने के उद्देश्य, कभी झांकी लगाने के उद्देश्य से लेकर चले आते हैं, ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
5: मैं तो ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पेड़ को तो बिल्कुल काटे नहीं
6: जी,
5: अगर काटते भी हैं तो एक तरफ लगाने का भी सोच रखें
6: बिल्कुल।
5: और पेड़ जो काट रहे हैं वो ऐसा पेड़ काटिए जो मोटा हो और काम योग हो
6: जी जी, फर्नीचर के काम,
5: फर्नीचर काम आए
6: और उसे लगाए
5: और अन्य जगह पर लगाए भी, और जो उसके टहनी वगैरह है वो जलावनी काम में आए,
6: जलावनी काम में जो सूख करके मिले उसको लाना चाहिए
5: जी जी।
6: तो अगर अपने खेत के मेड़ पर पेड़ लगाते हैं तो ऐसे ही मिलता रहेगा,
5: ऐसे ही मिलता रहेगा, जंगल जाने की जरूरत नहीं है
6: जी जी जी जी,
5: जी। मैं तो यही चाहूंगा कि सोच अगर बदलेगा
6: जी जी
5: तो समाज बदल जाएगा
6: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब आर्थिक स्थिति से पेड़ पालों के बारे में क्या आप विचार रखते हैं?
5: इससे पेड़ लगाने से भी हमारा आर्थिक स्थिति सुधार होगा। अगर आज मैं सागवान शीशम महोगनी का पेड़ लगा देता हूँ
6: जी,
5: तो आज लगा रहा हूँ तो आज तो काम नहीं होगा, लेकिन आने वाले 20 साल में हमारे जो पीढ़ी है
6: जी,
5: अगर एक बीघा में लगता है तो मुझे लगता है कि वो लाखों में जाएगा
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो इस पर्पस से भी मेरा उद्देश्य है कि मैं लगाऊंगा और लोगों को, किसान भाइयों के बीच में मेरा यही संदेश जाए
6: जी,
5: कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे दोनों तरह के पेड़ लगाएं और दोनों तरह से लाभ हो, फलदार से भी इमारती से
6: जी। शायद आपके भी जंगल के किनारे कुछ जमीन होंगे।
5: जी हाँ,
6: और पहले देखा जाता था कि जो जंगल से पतई बह बह करके आते थे जिस खेत में,
5: जी
6: उसमें बहुत अच्छा उत्पादन हो जा करता था।
5: जी हाँ,
6: तो ये जो पेड़ लगेंगे तो उसके पत्तियों से भी क्या कुछ खाद में वृद्धि हो सकती?
5: बिल्कुल
6: है,
5: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो इनके पत्ती झड़ेंगे
6: जी
5: और खेत में जाएंगे
6: जी,
5: वो एकदम बिल्कुल डीएपी यूरिया से कई गुना अधिक फायदा करता है, सड़ जाता है। ये तो बनावटी खाद हम लोग डालते हैं, ये प्राकृतिक खाद है
6: बिल्कुल,
5: और एक बार सड़ता गलता है तो कई साल तक काम

0: देता है खेतों में।
1: जी जी जी,
0: तो इससे ये भी बहुत अच्छा खाद के जगह में काम करता है।
1: इस प्रकार से मैंने कहा जा सकता है कि पेड़ पौधे एक पेड़ लेकिन इसका काम अनेक है। फर्नीचर भी है
0: जी हाँ,
1: और जो है कि फल भी। अब जहाँ आम की बात आती है तो मान लीजिए छोटे छोटे आम की प्रजाति है, वो तो बहुत फर्नीचर काम में नहीं आ सकते
0: जी।
1: लेकिन जो बड़े प्रजाति है आम, जो बीजू पहले से हम लोग के यहाँ लगते थे
0: जी,
1: वो तो जो है फर्नीचर के भी काम में आ जाते हैं
0: जी।
1: तो चलते चलाते किसान भाई लोगों से क्या कुछ रखना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों से मैं यही चाहूंगा
1: जी
0: कि मेरा जो निवेदन है आप सबसे कि आप जरूर पेड़ लगाएं, आने वाले समय के लिए यह अच्छा रहेगा।
1: तो निश्चित रूप से पेड़ लगाएं, पेड़ा खाएं। बाबू राम जी से बातचीत हो रही थी, आप मुर्ता के रहने वाले हैं दुधी ब्लॉक अंतर्गत। इतना अच्छा आपका योजना है, 500 पौधरोपण करने की आप तैयारी किए हैं, जुगत भी अपना लिए हैं, और कितना लाभ है पेड़ पौधों से, छाया के छाया, साथ साथ जो है कि खाद पानी बरसात, और जो है कि फल ऊपर से फर्नीचर, तरह तरह के लाभ है। एक पेड़ सौ पुत्र समान के बात आपने कहा। इतना अच्छा जानकारी देने के लिए और निवेदन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुराओ भैया।
3: हाँ बोला भैया।
2: देखा कितना हम लोगों के बातचीत बाबू राम भैया से, जो भोला भैया का बातचीत रहल।
3: हाँ भैया।
2: कि फलदार और इमारती प्रजातियों के पौध रोपण के तरीके से करे के बाद और उसे का फायदा हुआ।
3: अच्छा,
2: तो इतना बढ़िया हम लोगों के जानकारी जब दिवालन तब धन्यवाद तो बनते बा।
3: बिल्कुल भैया, अपन पंचम प्रसाद उनकर संगतिया के गावल एक ठो मनफेर के साथ धन्यवाद देवल जाए।

0: मुराओ भैया देखा कितना बढ़िया पंचम प्रसाद उनके संगतिया भैया हम लोगन के गीत गौन सुनौलन की जागे अब भोर भैले सजनवा रसवा पियबे भोरे भोर सजनवा।
1: वाह वाह भैया कितना बढ़िया मन फेर एकदम भैया सामयिक मन फेर रहे इनकर और जोन बाकी खरीफ के सीजन भी शुरू हो गए हुए और हम लोगन के भी अपने खेत में भैया देखा मोटा अनाज से लेके भैया धान नर्सरी भी अपन बुआई के काम होते हुए मोटा अनाज में भैया देखा मकई की बात होगा मकई भी बुआ होते हुए अरहर ज्वार बाजरा सावा कोदो मेड़ो और उसके साथ साथ तिलन में तिल के भी बुआई होते हुए और भैया देखा धान के नर्सरी भी अपने खेत में पड़ते हुए तो हम तो यही कब के भैया जहाँ भी अभी भी किसान भैया लोगन धान के नर्सरी नहीं के लिए हुए बिल्कुल बिना देर के लिए हम लोगन के धान के नर्सरी और जोन भी बुआई के काम बा बिना देर के लिए कर देवे के चाहिए
0: भैया। भैया देखा खेती पाती के साथ साथ ही ना हम लोगन के रुपया पैसा के भी जरूरत पड़ेला
1: बिल्कुल
0: और वो हमें रुपया पैसा खाती अब जैसे देखा हम लोग धान गेहूँ लगावत है तो ये हमें देखा जोन भगवान के गति से हम लोगन के धान की रोपाई हुई अब अगर पानी नहीं बरसल तो भैया देखा हम लोगन के सूखा पड़ जाए तो एक साथ साथ हम लोगन के देखा सह व्यवसाय भी करल जरूरी होला अब सह व्यवसाय में देखा बाग बगीचा लगा ला या ओकरे साथ साथ देखा बकरी पालन करा मुर्गी पालन करा भेड़ पालन करा ऐसे हम लोगन के दो पैसा के जुगाड़ हो जाए
1: एकदम एकदम सही कहते हो भगेलो भैया बहुत से सह व्यवसाय हुए जो उन किसानी से जुड़ल
0: आय में वृद्धि हो
1: जेकर सीधा लाभ भैया देखा जो उन बाकी सह व्यवसाय तो होबे करे लेकिन साथे साथे खेती किसानी
0: हाँ, हाँ,
1: अब पशुपालन के बात ले ला पशुपालन अगर हम लोग करत है जा तो भैया देखा जोन बाकी अपन दूध दही मठा पनीर मिले और ओकरे साथ साथ जोन गोबर के कंपोस्ट हो जब खेत में पड़ी तो भैया देखा जोन बाकी ऐसी उपज बढ़े ओकरे साथ साथ मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन मछली पालन बागवानी मशरूम उत्पादन और भैया देखा खाद प्रसंस्करण के बात होला इस तरह के भैया देखा रोजगार जब हम लोग अपनाए तो अपने आप भैया देखा हम लोग उनके आमदनी भैया देखा बढ़ शुरू हो
0: जाए भैया देखा अपने तक सीमित नहीं रहेला पूरा घर परिवार के रोजगार मिल जाला
1: बिल्कुल सही
0: यही बात के साथ ही देखा आप पंच भैया लोगन के फिर से हम लोग एक जानकारी दिवावत है कि बकरी पालन तक हर लोग करते बा जैसे दो मुड़बा चार मुड़बा दस मुड़बा लेकिन देखा ओकर बेड प्रबंधन के तरीके से करे के चाहिए तो ये विषय पर खजुरी गांव के जो दुद्धि ब्लॉक के खजुरी गांव बा वहां से अवध नारायण गुप्ता भैया से जो भोला भैया बातचीत के लिए हम तो भैया लोगों के बीच शामिल कर
1: लिया
2: श्रोताओं जीविकोपार्जन के लिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए व्यक्ति हर तरह की युक्ति अपनाता है। इसी क्रम में बकरी पालन मुर्गी पालन मत्स्य पालन की बात जहां आती है तो ये कृषि के अतिरिक्त अच्छा आमदनी के स्रोत माने जाते हैं और कृषि के एक पूरक भी हैं चूंकि इनके लेड़ी

0: देखरेख व्यक्ति नहीं कर पाता है, किस प्रकार के इनका लालन पालन करनी चाहिए, क्या विधि व्यवस्था देनी चाहिए, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी और नारायण गुप्ता जी से। तो और नारायण जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: देख रहे हैं कि आपके यहाँ कई प्रजाति के बकरियां दिख रहे हैं।
1: जी जी।
0: अब वो तो आप ही बताएंगे कौन कौन प्रजाति के है, लेकिन सबसे पहले आपका देख रहे हैं कि जो लोग का आवास बनाए हैं, चारों तरफ जाली जाली लगा हुआ है, जालियों का बाड़ा लगाए हुए हैं, और हमको लगता है 2-2.5 फीट आपके दीवार दिख रहे हैं
1: जी,
0: चारों तरफ से खुला खुला है। तो कैसे इनका बेड, मतलब इनको रहने के लिए आवास का किस बात को ध्यान में रखते हुए निर्माण करना चाहिए?
1: इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इनको रहने का निर्माण जब करेंगे तो सबसे पहले ये जीव ऐसे होते हैं जो कि आदमी खुद को रख करके अपने आप में देखे कि हमें किस चीज की तकलीफ तो नहीं है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: अगर हमें तकलीफ नहीं होगा तो इन्हें भी तकलीफ नहीं होगा।
0: अच्छा,
1: तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या है, जाली लगाने की जहाँ तक बात आती है, तो जाली और 2-2.5 फीट हाइट से कि कुछ जानवर ना आ जाए, इसके लिए 2-2.5 फीट का ये हम लोग दीवार देते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर से जाली लगाया जाता है, क्योंकि इन लोगों का जो पेशाब होता है, बीट होता है, एक समय नमी जब अगर बरकरार रहेगा, नमी अगर सूखेगा नहीं, तो कुछ गैस बनते हैं जैसे अमोनिया जैसी गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिसके वजह से इनके आंखों में चाहे इनको सांस लेने में तकलीफ होता है। और सांस लेने में तकलीफ अगर होगा तो इनको बीमारी भी आ सकती है और ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए इस तरह का निर्माण किया जाना चाहिए।
0: जी जी। अधिकतर देखा जाता है कि इन लोग का जो लेड़ी है या फिर ये कह सकते हैं कि मूत्र है, वे इकट्ठा हो जाते हैं, उससे बड़ा भजकते हैं।
1: हाँ, ये
0: अलग होना चाहते हैं। इसका हम लोग कैसे ध्यान रखें कि ये,
1: बस ये है कि ये कोशिश ये करना चाहिए कि अगर बाड़ा अगर आपका है तो ये दो भागों में डिवाइड, जैसे अभी बरसात आने वाली है तो ये दो भाग में आप बांट दीजिए बाड़ा को। एक भाग में रखिए एक दिन,
0: अच्छा,
1: और फिर दूसरे दिन दूसरे में, ताकि वो सूख जाए।
0: हाँ।
1: क्योंकि नमी इनको नहीं चाहिए।
0: अच्छा।
1: ये हमेशा सूखे में रहना पसंद करती हैं और हमेशा सूखे में ही रहना चाहेंगे ये
0: जी।
1: तो और सूखे में नहीं रहेंगे, नमी में रहे, अब रखने पे बाध्य अगर देंगे तो रहेंगे।
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन दिक्कत हो जाएगा इनको, परेशानी, जैसे खुरपका हो जाएगा और
0: पका
1: भी हो सकता है। तो ऐसे चीजों को ना होने पाए
0: जी, जी, जी।
1: उससे बचने के लिए हम इस तरह की युक्ति अपना सकते हैं कि अल्टरनेट करके एक एक बाड़े में एक जगह पे रखिए, दूसरे दिन दूसरे में रख दीजिए,
0: ताकि
1: सफाई। और सफाई इतनी जरूरी है कि पर डे के हिसाब से जो पानी पीने वाला पात्र है उसकी पर डे सफाई होनी चाहिए
0: जी।
1: पर डे ताजा पानी पिलाना चाहिए इनको। और साथ ही साथ इनका जहाँ रहने का जगह है वहाँ भी पर डे सफाई होनी चाहिए। और खाने पीने का भी पात्र है जो, उसको भी पर डे सफाई कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये आपके कब से मन में आया कि हम बकरी पालन?
1: दरअसल क्या है कि मैं यहाँ RCIT से मैं ट्रेनिंग लिया रावर्ट्सगंज से, तो वो लिया मैं शुरू में ये चाहता था कि मतलब लेयर फार्मिंग का मैं चाहता था काम करना।
0: अच्छा।
1: तो उसके लिए मैं मुर्गी पालन का ट्रेनिंग लेने गया। तो ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह का था जिसके वजह से हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए उसको।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ये हुआ कि भाई ट्रेनिंग तो लिए हैं, चाहे मुर्गी का लें चाहे बकरी का लें, या उससे कुछ मिलता जुलता ही है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो इसके वजह से मैंने कहा उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो सकता है, पर इसको पालने में कोई परहेज नहीं है, अब इसको किया जाए काम। तो लगभग हमको साल भर हो रहा है ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसके बाद आए तो हमने अपने पिताजी से भी बातचीत हुई, और पिताजी हमारे मुख्य रूप से देखभाल वही करते हैं। लेकिन कुछ अगर एबनॉर्मलिटी अगर जैसे कुछ हो गया तो सूचना देते हैं, तो हम कहीं भी रहेंगे, मान लीजिए दुकान पे हैं या कहीं भी हैं, अगर आ सकते हैं तो आते हैं, अदरवाइज अगर अगर अधिक है, अपने से पहुंच से बाहर है कि उनका हम उनको ठीक नहीं कर सकते, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक करवाया जाता है उसको। तो ये चीज़ है कि उसी समय से मेरे दिमाग में ये बात आया कि कुछ ना कुछ अभी ट्रेनिंग अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ काम किया जाए इस पर।
0: अच्छा।
1: तो इस वजह से मैंने,
0: तो इससे कुछ लाभ समझ में आता है
1: अभी? तो देखिए, बहरहाल हम देख रहे हैं कि लगभग 3-3.5 महीने आसपास हो रहा है हमको अभी लाए हुए बकरियों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, ग्रोथ सही है।

0: और आने वाले समय में हमको लगता है कि लाभ होगा।
1: तो कौन कौन प्रजाति के हैं बकरियाँ?
0: अभी तो देखिए हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बहुत विशेष कि अब अगर बकरी फार्म वगैरह करना है, बकरी पालन का काम करना है, तो विशेष प्रजाति का आप ले आए, जैसे तोतापरी हो गया, जमुनापारी हो गया, सिरोही हो गया, ये सब इत्यादि बड़े बड़े नस्ल हैं, तो इनको लाने के लिए। लेकिन मेरा सोच कुछ अलग था। मैंने कहा कि अगर शुरुआत अगर इन लोगों से किया जाए तो यहाँ का एटमॉस्फियर इन लोग अडाप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे,
1: हाँ,
0: उसमें अगर कहीं क्षति हो गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि थोड़ा देहाती नस्ल की लिया, जैसे जैसे ब्लैक बंगाल होते हैं, ये मझले किस्म के होते हैं। अगर बड़े बकरे अगर रहेंगे तो भी इनसे क्रॉस हो सकते हैं, छोटे बकरे रहेंगे तब भी क्रॉस हो सकते हैं। तो हम लोग सोचे कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा देहात जिसे है ब्लैक
1: देसी
0: बंगाल, हाँ
1: प्रजाति के।
0: देसी प्रजाति का,
1: जी
0: उसको लेकर के हम लोग शुरुआत किए। और ये शुरुआत करने के बाद हमने देखा कि अभी तक तो हमारे यहाँ कोई क्षति नहीं हुआ, और जितना लाए थे अभी सब स्वस्थ भी हैं, सही भी हैं।
1: नहीं, दिख रहे हैं आपके
0: हाँ
1: बकरियां तो भाई अच्छे हैं
0: हाँ
1: जी।
0: और उससे क्या हुआ कि हम लोग लाए थे 6 बकरी, एक बार लाए 6 बकरी और एक बार लाए, और मतलब उसमें बच्चा भी मतलब दिए उन लोग, 10 बच्चे हुए थे। तो बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो जाने की वजह से क्या हुआ कि बाड़ा में कुत्ता घुस के आ गया था,
1: अच्छा,
0: और मतलब दरवाज़ा खुला ही रह गया, लापरवाही कह लीजिए
1: हाँ हाँ
0: उसको।
1: हाँ
0: तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो पकड़ तो नहीं पाया,
1: हाँ
0: लेकिन वो डर के मारे मर गई, एक बकरी छोटी सी
1: ओ,
0: बच्ची
1: हदस
0: बच्चा था,
1: करके।
0: हदस करके मर गया।
1: अच्छा,
0: लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद उसका निवारण भी किया गया और सारा चीज़ है। अभी हमारे पास लगभग सब मिला के, छोटे बड़े सब मिला के 26 हैं अभी। हाँ, और सब स्वस्थ हैं, सब ठीक है।
1: अच्छा, कृषि कार्य में इन लोग क्या सहभागिता समझ में आती है?
0: सहभागिता यह है कि इनका सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे मान लीजिए कोई कोई चीज़ उपजा रहे हैं आप, तो उपजाने में अगर उसमें घास पात अगर हो रहा है तो आप यह भी चाहेंगे कि इनको खाने के लिए थोड़ा सा काट करके घास दे देंगे तो घास की सफाई हो गई वहाँ,
1: हाँ,
0: एक तो यह हो गया।
1: जी
0: दूसरी चीज़ यह है कि जैसे मान लीजिए इन लोग का बीट हुआ जिसको लेड़ी के नाम से
1: लेड़ी,
0: जानते हैं लोग,
1: हाँ
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: और इन लोग का मूत्र हुआ, अगर वो डेली के डेली अगर खेतों में अगर पड़ जाए या एक जगह इकट्ठा किए फिर बाद में इन खेतों में डाल दीजिए, तो वो इससे बढ़िया मतलब खाद हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसे होगा।
1: जी।
0: और ये खाद के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं और फसलें भी बहुत अच्छा से उगेंगे।
1: तो ये भी बताते हैं कि दीमक वगैरह के भी इसमें लगने की संभावना नहीं होती है,
0: नहीं
1: तो
0: होती है। हाँ,
1: निश्चित रूप से ये अच्छा है। और
0: और दूसरा एक लाभ, इससे सबसे बड़ी लाभ है, अभी देखिए बीच में अभी कोरोना आया था जिसमें लोगों का प्लेटलेट वगैरह काउंट बहुत कम हो जाता, बहुत गिर जाता था,
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: इसमें बकरियों के दूध का बहुत बड़ा महत्व है।
1: हाँ
0: इस सब उद्देश्य से भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बकरियों के साथ कहीं बचपन में भी सुना कहा गया है कि बकरियों के साथ रहने पे कोई बीमारी जल्दी
1: नहीं
0: नहीं
1: होती।
0: होती है, तो इंसान को भी फायदा है इससे।
1: जी।
0: हाँ
1: ये तो बहुत ही फायदे ही फायदा है।
0: हाँ हर तरह से
1: और
0: फायदा है।
1: हाँ, तो चूंकि रेडियो के माध्यम से आपका बात बहुत किसान भाई लोग सुन रहे हैं,
0: जी जी
1: वे भी बकरी रखते हैं,
0: हाँ
1: लगभग सभी लोग रखते हैं, एक आध दुका मान
0: हाँ
1: लीजिए व्यवसायिक दृष्टि से ना रख रहे हों, लेकिन फिर भी अपने
0: हाँ
1: घर के शोभा की दृष्टि से या जो
0: हाँ
1: भी दो चार पैसा मुनाफा के लिए।
0: जी जी
1: तो बरसात के मौसम में बहुत लोग कहते हैं कि टीला बना कर रखें या टाटे बना करके, मतलब यही वजह हो सकता है कि
0: हाँ
1: वो
0: बस उनका नमी से बचाना है।
1: जी।
0: बस बरसात में हर जगह नमी नमी रहता है। मान लीजिए ये भी होता है कि अगर किसी घर में बंद करके रखेंगे तो भी जानवरों को ये सूट नहीं करता है कि घर में बंद रहें हमेशा, तो इन लोगों को क्या है कि नमी से बचने के लिए मान लीजिए टाटी वाटी लगा दिए, ठीक है, एक वह भी उपाय है। और सबसे अच्छा उपाय तो हम लोग यही समझे हैं कि अभी क्या है कि बाड़ा को 2 भागों में बांट दीजिए,
1: जी।
0: एक भाग में रखिए एक दिन, दूसरे में दूसरे दिन रखिए, ताकि एक दिन गैप मिल जाएगा तो वहाँ सूखा सूख जाएगा, और फिर भी अगर नहीं सूखता है तो वो एडिशनल में जो आप बता रहे हैं कि थोड़ा टाटी वाटी करके रखिए ताकि नीचे अगर नमी नीचे रहे, ऊपर में
1: हाँ
0: अपना आराम से बैठे ये लोग,
1: बिल्कुल। अच्छा, इन
0: ऐसे
1: लोग
0: में।
1: के आहार में क्या देना होता है?
0: आहार में देखिए हम लोग स्टाल फीडिंग पे रखे हैं बकरियों को, स्टाइल फीडिंग का मतलब यह है कि हम लोग बांध के यहीं खिलाते हैं, जैसे फीडर अभी आप देखे उधर फीडर बना हुआ है
1: जी,
0: तो फीडर में भूसा है, भूसा के साथ साथ इन लोग का जो है

0: हल्दी थोड़ा सा उसमें मिक्स करना होता है ताकि
1: अच्छा,
0: एंटीबायोटिक।
1: हाँ,
0: और कभी कभी गुड़ देना होता है, और साथ साथ में उसका चूनी हो गया, चोकर हो गया, और जिसे गेहूं का दरिया हो गया।
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा,
0: ऐसा ऐसा चीज इन लोग को खिलाना पड़ता है। तो स्टाल फीडिंग पे रहते हैं तो इन लोग को सुबह तो एक टाइम ऐसे हो गया, शाम में थोड़ा सा टहलाने के लिए आदमी कहीं बाहर निकला तो चर के आ जाएंगी फिर।
1: अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, तो और विशेष क्या देख रेख करना होता है?
0: विशेष रूप से इनका देख मॉनिटरिंग सबसे बड़ी बात है कि पर डे एक एक बकरियों को आप कम से कम देख पाएं, और इतने फेमिलियर हो जाएं कि किसी को कोई दिक्कत हो तो उनको एक बार एक नज़र देखने के बाद भी आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको
1: कोई तकलीफ
0: प्रॉब्लम है
1: या, जी।
0: और उस प्रॉब्लम को समझिए और उसका निवारण कीजिए, और जितना जल्दी निवारण करेंगे उतना जल्दी आपका बकरी स्वस्थ भी हो जाएगा, और साथ साथ में क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको भी पैसे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
1: जी, तो चलते चलाते श्रोतालुओं से आप कुछ क्या कहना चाहेंगे?
0: बस ये कहेंगे कि इससे पहले दरअसल क्या है कि हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि बकरी पालना होगा या जो भी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार बकरी क्यों पाला जाए, बकरी तो मतलब ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: जी,
0: और एक अच्छा मुनाफा भी है साथ में, और बीमारी वगैरह ये सब चीज़ से बचने के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और मैं ये श्रोता भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अगर वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में अगर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा है।
1: जी जी जी, तो श्रोताओं, ये दुधी बला के खजूरी गांव से अवध नारायण गुप्ता जी थे। आप बहुत ही बृहद रूप में बताने का प्रयास किए बकरियों की देखभाल, और खासकर इसके क्या कुछ कृषि के साथ इसका क्या सामंजस्य हो सकता है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुराव भैया, देखा हम लोगों की तरफ से भी धन्यवाद बा, काहे कि खेती बाड़ी के साथ साथ देखा सब व्यवसाय के रूप में जो इन बकरी पालन के भेड़ प्रबंधन के बारे में बतौलन।
3: हाँ भैया,
2: तो भैया वो तरीके से हम लोगों के भी अपना करके अपन आमदनी के जरिया बनौले के जरूरत बा, और हर घर परिवार के लोगन के रोजी रोजगार में जोड़ने के जरूरत बा।
3: एकदम सही कहत हो भैया, भैया लेकिन कुछ भी छोटे छोटे बात एक में अगर हम लोगन ध्यान दे निश्चित रूप से हम लोगन के व्यवसाय भी है और दुगना तेजी से बढ़ी। भैया जोन भी लोग भैया देखा ये तरह के व्यवसाय करत हुए कृषि से जुड़ल व्यवसाय, भैया पहले उनसे जोन बाकी राय सलाह जरूर ले कि भैया देखा हम भी ये तरह के व्यवसाय करे चाहते है और के तरह के जोन बाकी फायदा बा का, एकरा मुनाफा बा का, घाटा बा, कौन सा रोग बा, ये तरह के जानकारी जुटावे चाहिए। और ओकरे साथ साथ भैया देखा जब भी भैया शुरुआत करें अपन व्यवसाय के छोटा स्तर पर शुरुआत करें, ताकि भैया देखा जोन बाकी धीरे धीरे ओकर बढ़वार होई तो भैया देखा जोन बाकी लाभ और हानि समझ में आते रहे। और ओकरे साथ साथ भैया देखा जोन भी व्यवसाय करे भैया देखा ओकर प्रशिक्षण जरूर लेवे, ताकि भैया देखा प्रशिक्षित जब रही है तो हर चीज की जानकारी रहे और ओकर निदान भी भैया देखा समय पर हो सके। और ओकरे साथ साथ भैया देखा जोन भी व्यवसाय हम लोगन करत है ओकर भैया देखा बाजार के भैया देखा पकड़ जोन बाकी बाजार के जानकारी भी हम लोगन के रखे के चाहिए कि जोन भी हम लोगन के जोन उत्पादन बा ओके भैया देखा के तरह से हम लोगन के बाजार में बेचे के चाहिए तो के तरह से भैया देखा फायदा हम लोगन के मिल सके। निश्चित रूप से भैया देखा बाजार के बात आवेला तो भैया देखा हम लोगन किसान है हर तरह के उत्पादन करेला, सब व्यवसाय के बात करला या साग सब्जी के बात करला, अनाज के बात करला, तो भैया देखा हम लोगन के साग सब्जी भी जोन बाकी अपने खेते में हमेशा रहला, और एक जोन बाकी हम लोगन के थाती अपने कार्यक्रम में बाजार भाव के भी रहला, तो जब हम लोगन के अपन जोन तरकारी बा अगर बढ़िया बाजार भाव मिलला, अच्छा बाजार भाव मिलला, तो हम लोगन के खलीता भी भारी रहला और खेती किसान में मन भी लगा,
1: मन भी लगा।
3: आज भैया देखा कहाँ से बाजार भाव आपके हाथ में आई लोगे ओके बाचा और हम लोगन सुनल ले गया।
2: भैया देखा दुधी मंडी के टटका बाजार भाव बा जवन के कुंतल में बा बसंत कुशवाहा भैया भेजले हवन।
3: हाँ,
2: तो देखा आलू बा 1600 से 1700 रुपए कुंतल, और टमाटर बा 2500 से 2800, और बैगन देखा 1500 से 1800, और गोल बैगन भैया ये देखा 500 से 600।
3: अच्छा भैया,
2: और मूली देखा 2000 से 2200 बा, और करेला 2500, और बोड़ा देखा 1800 से 2000 बा, भिंडी देखा 600 से 700 रुपया बा, और नेनुआ 1000 से 1200
3: भैया,
2: और खीरा 2000 से 2200, और रोई हो 1800 से 2000, और मकई देखा ये 1200 से 1400 बा, और चुकंदर 2500 से 2700, और लौकी देखा 1000 से 1200, और कोहड़ी 500 से 600, अदरक 17000 से 18000, और देखा हरा मिर्च बा 3,500 से 4,000 बा, और लहसुन देखा यो बा 1,300 से 1,400।
3: अच्छा भैया।
2: और हरा धनिया देखा 7,000 से 8,000 बा, और कटहल 1,000 से 1,200, परवल जोन बा की देखा 3,000 से 3,500 बा, और फूल गोभी 3,500 से 4,000, और पत्ता गोभी देखा 2,500 से 2,700 बा, 2,500 से 2,700, और देखा कुंदरू बा 1,800 से 2,000, और प्याज देखा 3,000 से 3,200, और शिमला मिर्च देखा 3,500 से 4,000, और नींबू देखा 150 से 200 रुपया सैकड़ा रहा।
3: वाह भैया, ये रहल बाजार भाव अपन बुद्धि के। बसंत कुशवाहा भैया जोन बाकी भेजले रहलन, और निश्चित रूप से भैया देखा जोन भी हम लोगन खेती बाड़ी अपन करत है, धान गेहूँ अरहर ये तरह के, में अगर भैया देखा साग सब्जी भैया देखा हम लोगन थोड़ा बहुत भैया देखा शुरू करें खेती, तो हम लोगन के जोन बाकी बढ़िया मुनाफा हो, और जोन भी अपन घर में साग सब्जी के जोन उपयोग होला ओकरा में भी बढ़िया हुई, हम लोगन के पौष्टिक जोन बाकी सब्जी मिली। सबसे बड़न चीज का भगेलू भैया की जोन भी हम लोगन बाजार से साग सब्जी खरीदत है ओके भैया देखे पौष्टिकता के जोन मात्रा बा बहुत ही जोन बाकी कम बा, जैसे कि भैया देखा रासायनिक खाद हो गई, रासायनिक दवा हो गई, बहुत ही ज्यादा जोन बाकी स्प्रे होखला छिड़काव होखला, तब जाके भैया देखा ओख जोन बाकी साग सब्जी में भैया देखा चमक और बढ़िया देखाला, और ओकरा हम लोग ला करके तो खाई ला, लेकिन ओकरा में पौष्टिकता भैया देखा एकदम नहीं रहला। निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन के साग सब्जी के भी खेती करे के चाहिए
2: भैया, यही से न कहल गई बा कि देखा घरे के चीज में भरोसा बा और बाहर के चीज में भरोसा नहीं बा।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये तरीका से हम लोगन के बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहे के बा, अपन घर ही में उगावा और घर ही में खा भैया।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हुआ, हम तक अब की भैया जोन बाकी एक मन फेर कर
2: तो देखा पंचम प्रसाद उनका संगतिया भैया के एक गीत गौनाई बार लचारी विधा में, तो हम तो कहा थे कि सुनल जाए,
3: एकदम सुनल जाए भैया।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: मुराव भैया।
4: हाँ बगेल भैया,
3: देखा कितना बढ़िया हम लोगों के गीत गौने भी सुने के मिलल। जब गीत गौने होला तो देखा गीत गौने से भी कुछ हम लोगों के संदेश छिपल रहला।
4: एकदम
3: हर तरह के गीत गौने से हम लोगों के भी सीख मिलेला। और देखा अब हम ये कहते कि अब आगे हम लोगों के बात होके का है कि देखा आज के युवा जवान बा वो देखा ढेर नशा के लत पकड़त हवन।
4: बिल्कुल,
3: तो इन नशा से मुक्ति हम लोगन के दिलावे के जरूरत बा, हर लोगन के जगौले के जरूरत बा और जगले के भी जरूरत बा।
4: एकदम भैया, नशा मुक्त युवा विकसित भारत जोन बाकी भारत सरकार के एक राष्ट्रव्यापी अभियान हुए और ये अभियान के लक्ष्य हुए कि भैया 2047 तक भारत को नशा मुक्त जोन बाकी बनावे के बाद। और जोन बाकी एक बारे में भैया देखा हर तरह के जोन बाकी जागरूकता फैलावे के काम शैक्षिक संस्थानों यानी स्कूल कॉलेज में भी है। और ओकरे साथ साथ भैया देखा हर स्तर पर भैया देखा लोगन के बतावे के प्रयास किए जाते हुए कि भैया देखा नशा से के तरह से जोन बाकी नुकसान हुए और के तरह से युवा पीढ़ी भैया देखा जोन बाकी एक गिरफ्त में आवत हुआ और कैसे छुटकारा पा सकलन। और भैया देखा 2047 तक एक लक्ष्य हुए कि भैया देखा नशा मुक्त भारत बना के एक सशक्त और जोन बाकी युवा जोन हुआ उनके सशक्त जोन बाकी पीढ़ी के निर्माण में भैया देखा कदम से कदम मिला के चल सके एक बारे में भैया देखा जोन बाकी प्रयास कई जाते हुए। तो निश्चित रूप से भैया देखा भगेलू भैया एक चीज हम लोगों के देखे के मिला कि जहां भी भैया देखा नशा हुए भैया देखा नासी नाश हुए कहा कि ऐसे भी हम लोगों ने जब देखी ला अपने आस पास पास पड़ोस और गांव में कि जहां भी जकरे घर में भैया देखा नशा के लत हुए एक दो लोग नशा करत हुए उनके घर के हालत देख ला तो आपके समझ में आए कि भैया देखा उनकर भैया देखा आर्थिक स्थिति रहे के स्थिति और शैक्षिक स्थिति एकदम बद से बदतर जोन बाकी होखत जाला और जोन बाकी पूरा एकदम कमजोर हो जाला। तो निश्चित रूप से भैया देखा जब युवा जोन बाकी नशा से मुक्त हो तभी भैया देखा सशक्त भारत के निर्माण हो सकेला।
3: और मुराव भी देखा आज जितना सड़क में दुर्घटना हो रहा बा तो देखा ये सब नशा के लत के कारण ही हो रहा बा कि और ज्यादा जहाँ दुर्घटना होता भैया देखा इन नया बचवा लोगन ही करत हुआ तो ऐसे हम लोगन के नाता तोड़े के बा और धीरे धीरे समाज के विकसित की ओर ले जाए के बा यही बात के साथ आज पंच भैया लोगन से विदा भी लेवे के
4: बा। एकदम भैया नशा नाश के जड़ हुए और हम लोगन के प्रतिज्ञा लेवे के चाहिए कि जोन भी लोग नशा करत हुआ उनके नशा से दूर करे खातिर हर संभव प्रयास हम लोगन करब। और घड़ी के सुई भी कहते हुए कि आज के पंचेती यही समेटल जाए तो चल जाए
3: तो सब पंचन के
4: राम राम भैया।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। आइए सुनते हैं लोकगीत। आज के कलाकार हैं पंचम प्रसाद और साथी। सबसे पहले सुनिए इनका गाया छपरहिया।

लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। इसमें आज के कलाकार हैं पंचम प्रसाद और साथी। अब सुनिए इनका गाया दादरा।

पंचम प्रसाद और साथियों के गाए इस गहरवा के साथ ही लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सुशीला कुमारी पुत्री लक्ष्मण जायसवाल निवासी ग्राम पड़रच टोला खडार थाना कोन

जनपद सोनभद्र, दिनांक 23 मई 2026 से लापता हैं। लापता सुशीला कुमारी का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, गोल पतला चेहरा, इकहरा बदन, नीले रंग की टी शर्ट और जींस पैंट पहनी है और पैर में सैंडल है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार तेजबली पुत्र जवाहिर निवासी ग्राम धौरहा थाना कर्मा जनपद सोनभद्र दिनांक 23 अप्रैल 2026 से लापता हैं। लापता तेजबली का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 40 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, लंबा चेहरा, इकहरा जिस्म, क्रीम कलर की शर्ट और सफेद पैंट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: हम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
4: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
3: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
5: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
4: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
3: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
6: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
3: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
7: यूपी का APY स्कीम में काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 9,25,00,000 से ज्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
3: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस।

सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में है कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने लिया है धनवान फिल्म से। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत।

वक्त की आवाज। इस फिल्म आइए सुनते हैं आशा भोसले, मोहम्मद अजीज और साथियों को। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत बप्पी लाहिड़ी का। सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे ट्रिप में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेश से पहले शक्ति फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। आशा भोसले की आवाज में है कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है सौदागर फिल्म से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से।

श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। आपने ट्यून किया है 102.7 आकाशवाणी एफएम। प्रेम रोग इस फिल्म में आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर को। संतोष आनंद की गीत रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। पेश है सुगम संगीत। इसमें आज सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें। सबसे पहले सुनिए इब्राहिम अश्क का कलाम भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई एक और गजल। शायर हैं राजेश जौहरी।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इनके गाए चंद और गजल आप सुनेंगे रात 8:30 बजे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत अर्पण फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की गीत रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में है कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है क्रांति फिल्म से। गीत रचना है संतोष आनंद की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंद गजलें भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। सबसे पहले सुनिए इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544527100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: सुगम संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए कतील शिफाई की लिखी गजल भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। ये गजल है भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

0: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी ओपरा है, अब आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिली इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
6: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट

0: इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से आनंद। इस फिल्म में आइए सुनते हैं मुकेश को। गीत रचना है गुलजार की, संगीत सलिल चौधरी का।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: भोले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत है चिराग फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत हैं, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है, कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का पहला गीत है दिल फिल्म से, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार है समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

और अलका याग्निक को कुछ कुछ होता है। इस फिल्म में आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार जतिन ललित।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में है कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म करण अर्जुन से। गीत रचना है इंदिवर की, धुन बनाई है राजेश रोशन ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोबरा केंद्र से। यह कार्यक्रम है रस धारा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण कार्यक्रम चल रहा है रसधारा गुलाम। इस फिल्म में आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार जतिन ललित।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शास्त्रीय गायन राग मालकौंस में।

कहूं जगे माता है।

Sa ne da ma ga sa, he di ga ma ga.

Mother,

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान द्वारा प्रस्तुत राग मालकौंस में ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं हमारी आज की यह सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।